था आज का अनमोल विचार। श्रोताओं, आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृवंदना।

संध्या गांगुली को सुनने के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं रविंद्र रावल की लिखी रचना अशोक खोसला के स्वर में।

ये थी रविंद्र रावल की लिखी रचना, जिसे आपने सुना अशोक खोसला के स्वर में। और अब कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं, आइए सुने नात शमशाद बेगम, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में।

0: श्रोताओ, शमशाद बेगम, महेंद्र कपूर और साथियों के गाए इस नात के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें मिश्रित खेती के संदर्भ में। समय के साथ साथ खेतीबाड़ी की विभिन्न प्रणालियां विकसित हुई हैं जिनसे कि हमें लाभ होता है। मिश्रित खेती में विभिन्न फसलों को एक साथ हम उगाते हैं। विभिन्न फसलों की वृद्धि का क्रम उनकी जड़ों की गहराई और उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। यदि दो फसलें जिनमें एक उथली जड़ वाली तथा दूसरी गहरी जड़ वाली हों तो दोनों मिट्टी की अलग अलग सतहों से नमी और पोषक तत्वों का भरपूर अवशोषण तथा उपयोग करती हैं। इस प्रकार जल और पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता बढ़ने से उनकी उपज बढ़ जाती है। विभिन्न ऊंचाइयों तक बढ़ने वाली फसलों के मिश्रण में कम बढ़ने वाली फसल ऐसी होनी चाहिए जिसे प्रकाश की कम तीव्रता की आवश्यकता हो। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि कुछ मिश्रण अधिक सफल होता है जबकि कुछ अन्य फसलों का मिश्रण उतना लाभ नहीं दे पाता। नारियल, केला और अदरक फसल

0: प्रणाली में सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग होता है, जिससे तीनों फसलों की अधिक उपज प्राप्त होती है। नारियल के बागान में केले और अदरक की फसल से आप अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, अदरक को सीधे सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती और नारियल के पेड़ इतने बड़े होते हैं कि उनके नीचे केले की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। मिश्रित खेती का ये एक अच्छा उदाहरण है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि कुछ फसलें ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जो दूसरी फसलों के लिए लाभप्रद होता है। उदाहरण के लिए, यदि दलहनी फसल मूंग को धान्य फसल ज्वार के साथ उगाया जाता है, तो मूंग की जड़ों की गांठों में एकत्रित हो रहे नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा ज्वार को मिल जाता है, जिससे ज्वार की जो उपज होती है वो बढ़ जाती है। ऊंचे तथा मजबूत तने वाली फसलों के साथ बेल वाली फसलों को बोना उपज की दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इस फसल मिश्रण में मजबूत तने वाली फसलें बेल वाली फसलों की बेलों को ऊपर चढ़ने में मदद कर उनके फलन को बढ़ा देती है। ऊंचे कद वाली फसलों की छाया ऐसी फसलों के लिए लाभप्रद हो जाती है जिन्हें कड़ी धूप की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अरहर और अनानास, अरहर हल्दी, अरहर अदरक आदि का मिश्रण। अनानास, हल्दी और अदरक ऐसी फसलें हैं जिन्हें सीधे धूप की आवश्यकता नहीं होती। किसान भाइयों, कुछ फसलों की उपस्थिति उनकी सहयोगी फसल को कीड़ों के आक्रमण से भी बचाती हैं, जैसे मक्का की फसल में ज्वार, लाल मिर्च में सौंफ आदि। अंतर्वर्ती खेती मिश्रित खेती का ही एक रूप है। मिश्रित खेती एक ही खेत और एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को साथ साथ किसी निश्चित कतार के बिना लगाने की पद्धति है। इसके विपरीत अंतर्वर्ती फसल प्रणाली में, जिसका उद्देश्य उपज और आय में वृद्धि करना है, एक ही खेत में एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को साथ साथ किसी निश्चित कतार क्रम में लगाया जाता है। अंतर्वर्ती फसल प्रणाली और मिश्रित खेती दोनों ही इसलिए की जाती है ताकि किसानों को आर्थिक तौर पर लाभ हो और भूमि क्षेत्र, जल, पोषक तत्व, सूर्य की रोशनी आदि का समुचित उपयोग हो। कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका पूरा पूरा उपयोग हो और उससे आर्थिक तौर पर किसानों को एक सुरक्षा प्राप्त हो।
1: मिश्रित कृषि प्रणाली। श्रोताओं, एग्रीटिप्स कार्यक्रम के तहत इस विषय पर आप जानकारी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और

0: छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रूपये से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,700 crore rupees.

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रंगत मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल 11 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान अगले दिन 12 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए

श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान आज ही रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल 11 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी शनिवार 12 तारीख को सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर शनिवार 12 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान रविवार 13 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। जहाज नालंदा नानकावरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर मंगलवार 15 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। इस जलयान की वापसी बृहस्पतिवार 17 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से चलकर नानकावरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

विजयपुरम वापस आएगा। जहाज नालंदा नानकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर मंगलवार 15 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। इस जलयान की वापसी बृहस्पतिवार 17 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से चलकर स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान आज दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी ज्वाली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान की वापसी शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी अगली सुबह प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय कल दिन के 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से चलकर स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलयानों के यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुए।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं सुनीता आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साया एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसके भीतर छिपे हैं कई एहसास। कभी किसी अपने का सहारा तो कभी बीती यादों की परछाई। माँ का साया हो, दोस्त का साथ हो या किसी खास इंसान की याद, साया हमेशा अपनेपन का एहसास कराता है। दूर हो या पास, तेरा साया मेरे साथ है। तो सामने नहीं, फिर भी तेरा एहसास मेरे पास है।

दोस्तों, जहाँ प्यार का साया हो वहाँ जिंदगी खूबसूरत लगती है। समय बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादों का साया कभी नहीं बदलता। तेरे प्यार का साया यूं ही बना रहे, मेरे दिल में तेरा एहसास सदा रहे। दूरियाँ चाहे जितनी भी हो हमारे बीच, मेरा दिल हमेशा तेरे पास रहे।

दोस्तों, जिंदगी में किसी का साया बनना, उसके जीवन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। कुछ लोगों का साया दूर होकर भी हमारे दिल से दूर नहीं होता। तेरा साया आज भी मेरे दिल के करीब है, तो दूर है मगर तेरा साया दिल के करीब है।

0: तो दोस्तों, अपने किसी खास के लिए एक खूबसूरत साया बनकर जरूर रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ एक नए अंदाज में। नमस्कार। इंद्रधनुष।
1: श्रोताओ, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुति स्वर सुनीता की थी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान।

अयोध्या में 14 वर्षों की लंबी अवधि के बाद कुटुंबियों तथा अयोध्या वासियों से श्री राम के मिलन का अद्भुत दृश्य उपस्थित है। माता कौशल्या एकटक पुत्र को निहार रही हैं। मन में गर्वयुक्त सहज उत्कंठा घुमड़ रही है कि उनके इस कोमलतन पुत्र ने किस प्रकार रावण तथा अन्य भीमकाय राक्षसों को मारा होगा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता को संग लेकर जब उपस्थित जनसमुदाय महलों की ओर चला तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तोरण द्वारों और वंदनवारों से सजी अयोध्या नगरी में सर्वत्र मंगल छा गया।

अनुराधा पौलवाल के स्वर में श्रोतावा अभी आप रामचरित मानस गान की 357वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। श्रोता लीजिए सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत श्रोताओं अभी आप चंद देशभक्ति रचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही एक या दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने व बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया गया है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 35 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिससे समुद्र अत्यधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 11 सितंबर तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोता अब लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देशरागनी। ठीक इसी समय पर FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से रिले प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुनिए सुबह 7:30 पर, जिसमें पर्यावरण कार्यक्रम के तहत जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा विषय पर डॉक्टर लालजी सिंह के साथ की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर और वत्सला मेहरा को आप सुन पाएंगे। तराने

ध्वनि फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप कर्नाटक शैली में एम बाला मुरली कृष्णन का गायन सुन पाएंगे। SMS माई चॉइस कार्यक्रम सुनिए सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे समय रहेगा कार्यक्रम NCERT का। चित्रगीत फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए दिन के 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसमें कुछ सुपरहिट गीत सुनवाई जाएंगी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर सुगम संगीत आप सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर सुनिए प्रद्युम शर्मा को कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत। और आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम सुनिए दोपहर 1:30 पर। श्रोताओं, दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर आप सुनेंगे नॉनस्टॉप म्यूजिक तथा दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों से सजा विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो की प्रस्तुति होगी। शाम 4 बजे हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा मलाक्का गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत आप सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुनिए शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। बहारों की शाम कार्यक्रम सुनिए शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के तहत कृषि कार्यक्रम वरण उलगम आप सुनेंगे। बांग्ला कार्यक्रम सुनिए शाम 5:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे कार्यक्रम चिरंतनी। शाम 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की भूमिका और रोजगार के अवसर विषय पर मक्का पहाड़ निवासी श्रीमती एस पुष्पलता से की गई बातचीत सुनवाई जाएंगी। महफिल कव्वाली कार्यक्रम सुनिए शाम 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं सुनिए शाम 7:15 पर। शाम 7:30 पर युवा श्रोताओं को समर्पित कार्यक्रम युवावाणी आप सुनेंगे, जिसके तहत पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार आप सुन पाएंगे। चित्रपट संगीत रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, और रात्रि 10 बजे सुनिए कार्यक्रम संदेश आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइड स्टोरी सुनिए रात 9:45 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तथा रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से रिले प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत आप सुन पाएंगे। श्रोताओं, अभी आप आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे, और अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: चत्वारिंशदधिक पञ्चशत किलोमीटर मितः रेलमार्गः वर्धिष्यते। एतासां पञ्च परियोजनानां अनुमानितव्ययः आहत्य एकविंशत्यधिक दशसहस्र कोटि रूप्यकाणि अस्ति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनेन सप्तशताधिक दशसहस्र कोटि रूप्यकेभ्यः अधिकमूल्याः तिस्रः अन्याः रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। एताः परियोजनाः पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यानां चतुर्दश जनपदेषु विस्तरिष्यन्ते। एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्रीवैष्णवः संसूचितवान् यत् मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा आगामी वर्षे प्रारप्स्यते। भारतम् अष्टचत्वारिंशत्तम विश्व कौशल प्रतियोगितायां प्रथमवारं एकादश नूतन कौशल श्रेणीषु सहभागं करिष्यति। इयं प्रतियोगिता अस्य मासस्य द्वाविंशतितः सप्तविंशति दिनांक पर्यन्तं चीन देशस्य शांघाई नगरे आयोजयिष्यते। कौशल विकास उद्यमिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् टीम स्किल इंडिया इत्येतत् चतुष्षष्टि कौशलेभ्यः त्रिषष्टि कौशलेषु प्रायः सप्तति प्रतियोगिताभिः युक्तेन दलेन सहभागं करिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अद्यावधि विश्व कौशल प्रतियोगितायाम् इयं भारतस्य बृहत्तमा विविधता पूर्णा च सहभागिता भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ब्रिक्स देशेभ्यः महिलाभ्यः अवसर विस्ताराय तथा अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे महिला उद्यमिनीनां महिला नेतृत्वाधीनानां च उद्यमानां प्रोत्साहनाय मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। श्रीगोयलः बलं दत्तवान् यत् महिला नेतृत्वाधीनेभ्यः उद्यमेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे अवसराणां लाभं स्वीकर्तुं स्वकीयां सहभागितां च वर्धयितुम् आवश्यकं सहकार्यं मञ्चश्च प्रदातव्यौ। ग्रामीण विकास मन्त्रालयस्य अन्तर्गतं भूमि संसाधन विभागः अद्य डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 3.0 इत्यस्य कार्यान्वयन संबद्धान् दिग्निर्देशान् प्रकाशयिष्यति। मन्त्रालयेन सूचितं यत् आगामी DILRMP 3.0 इत्येतत् 50.65 कोटि रूप्यकाणां अनुमानित वित्त व्ययेन केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना रूपेण कार्यान्वितं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन ओडिशायाः पृथक् पृथक् स्थलेषु अद्य प्रबलाति प्रबल वृष्टेः सम्भावनां दृष्ट्वा रक्तवर्णपरा सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 32.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सुबह 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% तथा न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:24। श्रोताओ अब लीजिए सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा उड़ान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देशरागनी। FM 100.9 MHz पर सुबह 7:15 पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से रिले प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी सुबह 7:30 पर, जिसके तहत पर्यावरण कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा विषय पर डॉक्टर लालजी सिंह के साथ की गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर, कलाकार होंगे रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर और वत्सला मेहरा। फिल्मी गीतों के शौकीन रखने वाले श्रोताओं को हम बता दें, सुबह 9:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने, SMS माई चॉइस श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, जिसकी प्रस्तुति होगी सुबह 10:00। चित्रगीत कार्यक्रम दिन के 11:30 पर आप सुनेंगे। शास्त्र संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:30 पर कर्नाटक शैली में M. बाला मुरली कृष्णन का गायन प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन के 11:00। कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुनिए दोपहर 1:30 पर।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंडमान निकोबार प्रशासन ने आम जनता से पानी का किफायती उपयोग करने की अपील की है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नामांकित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। मत्स्य पालन विभाग की ओर से मत्स्य पालन और पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकों के दौरान मछलियों का स्वच्छ रखरखाव विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगामी डॉक्टर ताली मरेन एओ जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। सुबह के समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। अंडमान निकोबार प्रशासन ने आम जनता से पानी का किफायती उपयोग करने और अपनी दैनिक गतिविधियों में जल संरक्षण पद्धतियों को अपनाने की अपील की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार चालू मानसून अवधि के दौरान द्वीपों में लगभग 21% वर्षा की कमी दर्ज की गई है। मई से सितम्बर की अवधि के दौरान धन्नीखाड़ी क्षेत्र में केवल 1047 मिलीमीटर वर्षा हुई, जिससे जलाशयों और पेयजल स्रोतों पर असर पड़ा है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। प्रशासन ने जल संरक्षण के लिए नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही होटल, संस्थान, कार्यालय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और हाउसिंग सोसाइटियों से भी

जल प्रणालियों में रिसाव की समय समय पर जांच करने और अत्यधिक खपत से बचने का अनुरोध किया है। लोगों से सार्वजनिक क्षेत्रों में लीकेज होने पर अंडमान लोक निर्माण विभाग और नगरपालिका परिषद को सूचना देने को कहा गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक फर्जी वीडियो सामने आने के बाद लोगों को आगाह किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री के नाम पर 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश से हर महीने 25 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने वाली निवेश योजना का प्रचार करने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने कहा है कि यह वीडियो फर्जी और AI से बनाया गया है। उसने स्पष्ट किया कि सरकार या प्रधानमंत्री ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। तथ्य जांच इकाई ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान वेबसाइटों, लिंक, फोन करने वालों या संदेशों के साथ बैंक संबंधी जानकारी, OTP या अन्य वित्तीय जानकारी साझा न करें। ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान एवं शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के तहत पात्र ग्रामीण युवाओं को मुफ्त आवासीय और रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नामांकित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। यह पाठ्यक्रम युवाओं को व्यवहारिक उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रदान करने और उभरते तथा सेवा क्षेत्र के व्यवसायों में टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से चुने गए हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में 18 से 35 वर्षीय पुरुष और 18 से 45 वर्षीय महिला उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निशुल्क है। प्रशिक्षण के सफल समापन पर योजना के प्रावधानों के अनुसार 100% प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है मत्स्य और फुटबॉल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी की दक्षिण अंडमान जिला कार्य योजना 2026-27 के तहत मत्स्य पालन विभाग की ओर से फिश लैंडिंग सेंटर जंगलीघाट में मत्स्य पालन और पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकों के दौरान मछलियों का स्वच्छ रखरखाव विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समन्वय फिश लैंडिंग सेंटर के प्रभारी हेमंतो किर्तोनिया द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मछुआरों को मछलियों की गुणवत्ता और ताजगी बनाए रखने, स्वच्छता, फूड पॉइजनिंग से बचाव के उपाय, व्यक्तिगत स्वच्छता, उपकरणों और डिब्बों की सफाई के महत्व पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर सभी 20 प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उधर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा पानीघाट में आयोजित सी फूड से मूल्य वर्धित उत्पाद विकास पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मत्स्य पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान कोचिन के सहयोग से आयोजित किया गया था। अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आगामी डॉक्टर ताली मरीन AO जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2026-27 के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। ट्रायल जंगलीघाट स्कूल मैदान में 13 सितंबर को सुबह 9 बजे से रखा गया है। इस चैंपियनशिप के लिए 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2012 के बीच जन्मे बालिका खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। एसोसिएशन ने सभी जिलों, विभागों, क्लबों, सेवाओं और गांवों से पात्र खिलाड़ियों को चयन ट्रायल के लिए भेजने का अनुरोध किया है। अधिक जानकारी के लिए मोइनू और एसोसिएशन के पदेन सचिव संजय मेशाक से फोन पर संपर्क किया जा सकता है। उद्योग निदेशालय की ओर से ग्राम पंचायत गुप्तापाड़ा में आयोजित हस्तशिल्प पर 15 दिवसीय अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हो गया। इस अवसर पर उद्योग निदेशालय के अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानीय कार्यक्रम आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रयास ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्वदेशी शिल्प परंपराओं को संरक्षित करने और जमीनी स्तर पर स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए उद्योग निदेशालय की जारी

लोगों का एक हिस्सा है। इस प्रशिक्षण पहल का उद्देश्य नारियल की खोल, लकड़ी, बेत, बांस और कॉयर सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध पर्यावरण अनुकूल कच्चे माल का उपयोग कर उत्पाद बनाने में तकनीकी कौशल प्रदान करना था। प्रशिक्षण में कुल 20 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। स्कूल ऑफ नर्सिंग में अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर अंग्रेजी और कंप्यूटर विषय के लिए शिक्षकों का सीधा साक्षात्कार लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार स्वसत्यापित दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन 24 सितंबर को शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार 29 सितंबर को सुबह 10 बजे से जीवीपंत अस्पताल स्थित स्कूल ऑफ नर्सिंग के पुराने ओपीडी भवन में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा 1,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये प्रतिमाह होगा। यूटी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के तहत अनुबंध के आधार पर ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों

अंग्रेजी और कंप्यूटर विषय के लिए शिक्षकों का सीधा साक्षात्कार लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार स्वसत्यापित दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन 24 सितंबर को शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार 29 सितंबर को सुबह 10 बजे से जीवीपंत अस्पताल स्थित स्कूल ऑफ नर्सिंग के पुराने ओपीडी भवन में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा 1,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये प्रतिमा होगा। यूटी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के तहत अनुबंध के आधार पर ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार 18 सितंबर को सुबह 10 बजे सहायक निदेशक कृषि कार्यालय मायाबंदर में लिया जाएगा। विभाग ने उम्मीदवारों से साक्षात्कार में निर्धारित समय पर उपस्थित होने को कहा है। दक्षिण अंडमान जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए साक्षात्कार 16 सितंबर को सुबह 10 बजे लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार प्रशासन ने आम जनता से पानी का किफायती उपयोग करने की अपील की है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नामांकित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। मत्स्य पालन विभाग की ओर से मत्स्य पालन और पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकों के दौरान मछलियों का स्वच्छ रखरखाव विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगामी डॉक्टर ताली मरीन एओ जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

देश रागनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, भारत एक ऐसा शब्द है जो मन को संवेदनशील कर देता है और रगों में ऊर्जा भर देता है। भारत एक देश ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं की जीवंत पहचान है, जहां विविधताओं के बीच एकता का अद्भुत संगम हम देखते हैं।

भारत को वीरों की भूमि कहना केवल एक उपमा नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास की सच्चाई है। इस पावन धरती ने ऐसे अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं को जन्म दिया जिन्होंने मातृभूमि की सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

जिस मिट्टी में वीरों का लहू मिला हो, उस मिट्टी की खुशबू भी देशभक्ति की कहानी कहती है। श्रोताओं, हमारे सैनिक आज भी सीमाओं पर दिन रात जागकर राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। उनका साहस हमें सिखाता है कि राष्ट्र प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि समर्पण और जिम्मेदारी है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार और कार्यक्रम में अभिनंदन। श्रोताओं, जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल है। इस सुविचार के साथ कर रहे हैं आज के गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का आगाज और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं पर्यावरण कार्यक्रम, जिसके तहत आज का हमारा विषय है जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा।
1: पर्यावरण कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अपर निदेशक एवं वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह को। डॉक्टर लालजी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में।
2: धन्यवाद मैडम आमंत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम में।
1: और श्रोताओं, इनसे हमारी बातचीत का विषय है जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो आप बताएं संक्षेप में कि जैव विविधता क्या है।
2: आज का विषय

0: जो आपने चुना है, अगर इस विषय को हम देखें तो संतुलित एवं संरक्षित पर्यावरण के संदर्भ में तो यह विषय आपने जो चयन किया है ये बहुत ही सारगर्भित है और जनमानस केंद्रित है। अगर हम जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन को देखें तो ये दोनों ऐसे विषय हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और इन्हें हम ओवरलुक नहीं कर सकते। जहाँ पर हम पाते हैं कि जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन ये दोनों काज एंड इफेक्ट के रूप में प्रतिबिंबित होता है। अगर हम अपने पूरे संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर हमारी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन हमें एक काज और इफेक्ट के रूप में प्रतिबिंबित होता है। आपने प्रश्न किया जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता को बहुत ही सरल रूप में अगर हम परिभाषित करें तो जैव और विविधता, जैव मीन्स लाइफ और विविधता जहाँ विविध रूप हो, दैट मीन्स डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ द लाइफ, जिसमें आज हम फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत करते हैं तीन कैटेगरी में। तो इन तीनों का जो संयुक्त रूप है, जो संगठित स्वरूप है, वो संगठित स्वरूप ही जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को दर्शाता है।
1: आपने बात की जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, सरल शब्दों में बताएं क्या संबंध है इनका?
0: जैव विविधता जब पृथ्वी पर इवॉल्व हुआ, जिसे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं, उसके साथ ही साथ डाइवर्स इकोसिस्टम भी हमारे अर्थ पर इवॉल्व हुआ। अब अगर हम इकोसिस्टम के इंटायर कंपोनेंट की बात करें तो हम पाते हैं कि वहाँ दो प्रकार के कंपोनेंट उपस्थित हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इन दो कंपोनेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से ही हमारा इकोसिस्टम बनता है और इन इंटरेक्शंस का रिजल्ट ही हमारी प्राकृतिक धरोहर जैव विविधता है और इस जैव विविधता के कारण ही हमारा क्लाइमेटिक चेंज में परिवर्तन जो भी दिखता है वो सीधे सीधे उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत बात करें तो इसमें तीन चेन आती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, और ये तीनों को मिला लीजिए तो
1: जी
0: यही बायोडाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है। प्रोड्यूसर में हमारा वनस्पतियाँ, वन, ग्रीन प्लांट्स, ये जितने सभी पादप हैं ये प्रोड्यूसर्स में आते हैं। कंज्यूमर्स में हम मानव एवं अन्य जंतु आते हैं। डिकम्पोजर्स में, जैसा कि मैंने डिफाइन किया कि तीन मिला के फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैव विविधता को संरक्षित करता है, इनकी जो संरचना हुई ये तीनों से हुई और वो डिकम्पोजर ही इन तीनों एलिमेंट्स को डिकम्पोज करके पुनः नेचर में मिलाता है, यानी रिसाइकलिंग होती है। अगर हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को संयुक्त रूप से देखें तो यही हमारा बायोडाइवर्सिटी का स्वरूप है और इनका कोई भी अवांछनीय परिवर्तन होता है इनके प्राकृतिक स्वरूप में तो यह परिवर्तन ही हमें निगेटिव क्लाइमेट चेंज की ओर अग्रसित करता है या प्रोत्साहित करता है। अब इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट पे हमने आपको ब्रीफ किया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर, लेकिन एबायोटिक कंपोनेंट का जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो है क्लाइमेट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लाइमेट की अगर बात करें तो क्लाइमेट बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जिसमें लाइट, विंड, वाटर इत्यादि ये सभी कंपोनेंट आते हैं और अगर इनके हम प्राकृतिक स्वरूप को छेड़छाड़ करते हैं तो हमारा होने वाला जो परिवर्तन है क्लाइमेट में सतत चल रहा है सिंस द डेट ऑफ द इवोल्यूशन, वो निगेटिव चला जाएगा, हमें पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो प्रेजेंट अवस्था में अगर हम देखें अर्थ पर तो जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ये जितने भी हैं, अगर इनमें अनवांटेड एबनॉर्मल चेंजेज होता है तो हमारा बायोडाइवर्सिटी सीधे प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन की अगर हम वर्तमान में देखें तो ये बहुत ही आजकल बर्निंग टॉपिक है कि वी आर फेसिंग विथ ग्लोबल वार्मिंग, ड्रॉट, वेरियस काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन।

0: ये सभी जितने भी निगेटिव क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट हैं, इससे हमारी जैव विविधता केवल अंडर थ्रेट ही नहीं है, बल्कि एक्सटिंक्शन की ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है। और जब तक हम बायोडायवर्सिटी को संरक्षित अवस्था में नहीं रखेंगे, तब तक हमारे सामने निगेटिव क्लाइमेट चेंज एक विकराल रूप धारण करके आता रहेगा, और स्थिति वहाँ भी पहुँच सकती है कि जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त भी हो सकता है।
1: यानी कि जैव विविधता जो है हमारे जीवन के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे में जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो एक आम आदमी किस तरह से अपने कार्यकलापों में परिवर्तन लाए या उनकी दिनचर्या क्या रहे?
0: इस तथ्य को मैं बहुत ही सरल रूप में समझाना चाहूँगा, जो सर्वविदित है। अगर हम पृथ्वी पर वन आच्छादित भूभागों का सर्वे करें या देखें, तो हम पाएंगे कि उन भूभागों में तापक्रम की जो स्थिति है, इन कंपैरिजन टू जहाँ पे वन कम आच्छादित हैं, वहाँ टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलता है। लेकिन जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं, वहाँ पे टेम्परेचर हमें उतना इंक्रीज नहीं मिलता जो अदर भूभागों में मिलता है, जिसके वजह से केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर त्राहिमाम मचती है। दूसरा पहलू, हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हम वर्षा के स्तर को देखें, तो हमारे देश ही नहीं, संपूर्ण भूभाग को अगर सर्वे किया जाए, तो हम यही पाते हैं कि वर्षा की दर उन भागों में बहुत ही अच्छी है जहाँ वनस्पतियाँ या वन आच्छादित भूभाग हैं। तो पहली विषय तो यह है कि जो हम मानव उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमें उस ओर सोचना होगा कि हमारी बायोडायवर्सिटी कैसे संरक्षित रहे। और ये बायोडायवर्सिटी जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगी, जितना डाइवर्सिफाइड होगी, उतना ही हमारा क्लाइमेट चेंज पॉजिटिव होगा। ये एक बहुत ही साक्षात प्रमाण है आज के युग में कि जब हम जंगल के भीतर होते हैं, वनों के अंदर होते हैं, तो हमें बहुत ही प्लीजेंट टेम्परेचर मिलता है। लेकिन जैसे ही हम वन से बाहर आते हैं, तो हमें वो प्लीजेंट टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। और जो बाहर वृक्षों की संख्या कम है, या हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, इसके लिए उत्तरदायी केवल समस्त जनमानस है।
1: यानी वनों की कटाई,
0: वनों की कटाई
1: कटाई एक बहुत बड़ी समस्या
0: या
1: है जैव विविधता के लिए। इसके अलावा डॉक्टर सिंह ये बताएं कि जैव विविधता को और किससे खतरा है?
0: देखिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, मतलब जितनी भी अनवांटेड हमारे बिहेवियर हैं जो उनके नेचुरल स्टेटस को डिस्टर्ब करते हैं। ये एक मैंने छोटा सा उदाहरण बताया। इस तरह से हम कुछ भी अपने जीवन से संबंधित चीजें हैं जो हर एक जनमानस को आत्मसात करना चाहिए कि अगर हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहाँ की कोई भी प्राकृतिक संपदा का अगर अपने दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, तो उसे हमें कैसे करना चाहिए जिससे उसकी प्राकृतिक अवस्था डिस्टर्ब न हो और संतुलित न हो। ये तो क्लाइमेट चेंज की ही बात है। हम ये भी भूल जाते हैं कि ये हमारी बायोडायवर्सिटी हमारे लिए फूड, मेडिसिंस एंड ड्रग्स का मुख्य नेचुरल रिसोर्स है, जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कह लीजिए, हम उससे जुड़े हुए हैं। ये तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम नेचुरल ब्यूटी की बात करें, तो जहाँ वन आच्छादित पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, अच्छे गार्डन होते हैं, अच्छी छाया होती है, वो सभी हमें एक नेचुरल ब्यूटी प्रदान करने के साथ साथ एक प्लीजेंट एस्थेटिक प्लेजर देते हैं। और जो एस्थेटिक प्लेजर हमें मिलता है, वो शायद किसी आर्टिफिशियल सिस्टम से नहीं मिलेगा। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि ये अफॉर्चुनेट है कि हम मानव या जन समुदाय प्रकृति से विमुख होते जा रहे हैं और डे बाई डे हमारी बायोडायवर्सिटी डिक्लाइन करती जा रही है।
1: अंत में आप सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक जनमानस की एक मोरल ड्यूटी बनती है कि जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन की कटु सत्यता को स्वीकार करते हुए अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाएं कि हम एक पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज के प्रति एक कड़ी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके।

0: तभी ये संभव हो पाएगा कि इस पृथ्वी पर एक संरक्षित एवं सुरक्षित जीवन स्थापित हो पाएगा।
1: कहने का तात्पर्य ये है कि जैव विविधता के संरक्षण से ही जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हम अपनी लड़ाई अच्छी तरह से लड़ सकते हैं।
0: हाँ, उसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। अगर इस अर्थ को हम लिविंग प्लेनेट कहते हैं, यहाँ पे जीव समुदाय, फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी रहते हैं, तो बिना इनके सामंजस्य के क्लाइमेट एक बैलेंस अवस्था में, संतुलित अवस्था में स्थापित हो ही नहीं सकता है।
1: तो डॉक्टर लालजी सिंह, आज आप आए हमारे कार्यक्रम में और आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। हम समझते हैं कि वो आपकी इन बातों पर ज़रूर गौर फरमाएंगे। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: पर्यावरण कार्यक्रम के तहत श्रोताओं, अभी आप विषय जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा विषय पर डॉक्टर लालजी सिंह की ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुन रहे थे। इनके साथ भेंट कर रही थी जयशीला। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय है आपको चंद गीत सुनवाने का, तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म बागी से। आवाज़ें हैं अरमान मल्लिक और श्रद्धा कपूर की। गीत लिखा संजीव चतुर्वेदी ने तथा इस गीत को संगीतबद्ध किया अमाल मल्लिक ने।

श्रोता, कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हमने लिया था बागे फिल्म से, आवाज़ें थी श्रद्धा कपूर और अरमान मलिक की। कार्यक्रम में हम कुछ और गीतों के साथ लौटेंगे इस अंतराल के बाद।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 5,20,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

कार्यक्रम में आपको अब सुनवा रहे हैं मिथुन का गाया हुआ संगीत बतकिया की एंड का फिल्म का ये नगमा। रचनाकार हैं सईद कादरी।

कार्यक्रम में श्रोताओं अब लीजिए सुनिए एयर लिफ्ट फिल्म का ये नगमा अमाल मल्लिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। गीत लिखा कुमार ने तथा इस गीत की तर्ज बनाई अमाल मल्लिक ने।

अरिजीत सिंह का गाया, कुमार का लिखा व अमाल मलिक का संगीतबद्ध किया। ये था एयरलिफ्ट फिल्म का गीत, और इस गीत के साथ ही आज का हमारा गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद होगा समाचारों का प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे फोर्थ लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो

0: कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
0: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
6: मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प।

0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अर्भिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिले में और लॉन्गटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या

0: की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए news.air.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दांव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स

0: ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में पांचवां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दांव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight, specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said, these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsuguda, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arnakulam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bangarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Omalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs.
3: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए वत्सला मेहरा के स्वर में चंद गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर और वत्सला मेहरा की आवाज़ों में चंद गज़लों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी श्री पुजपुरम है, सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फकीरा फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीत लिखा व संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।

कार्यक्रम तराने सुहाने कार्यक्रम में श्रोताओ लीजिए सुने किशोर कुमार की आवाज़ में बॉम्बे टू गोवा फिल्म का ये नगमा। राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे हैं।

0: Ruman.
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 10 बजे आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम होगा एसएमएस माई चॉइस। अगर आप अपने पसंद वाले गीत सुनना चाहते हैं तो हमें एसएमएस करें इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार फिर दोहरा दें, 9474234000। फिल्म का नाम, गीत के बोल के साथ साथ अपना नाम और पता लिखना ना भूले और भेज दे हमें अपने फरमाइशी गीत इस नंबर पर।

किशोर कुमार का गाया ये है चोरी मेरा काम फिल्म का गीत, वर्मा मल्लिक का लिखा गीत जिसकी धुन तैयार की कल्याण जी आनंद जी ने।

ये था राजपूत फिल्म का गीत, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने तथा इस गीत की धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोता और आप कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, गुलजार के लिखे शब्द लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है गुलामी।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में ये था गुलामी फिल्म का गीत, और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूँ जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?
2: ड्राइव स्मार्ट, ड्राइव मारुति सुजुकी ऑल्टो केटन, जिसमें है माइलेज ऑफ 24.90 किलोमीटर पर लीटर। स्मार्ट प्ले स्टूडियो, 15 प्लस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स, नेक्स्ट जेन के सीरीज 1.0 लीटर ड्यूअल जेट, ड्यूअल विविटी इंजन और स्पेशियस इंटीरियर्स। बाय ऑफर्स अप टू 40,500। ऑफर्स स्टॉप।

0: लंबी 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है सवेरे के 9:30। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्ते, गोइंकास लेकर आया है गणेश पूजा का नया कलेक्शन। त्योहार की खुशियों के साथ अपने स्टाइल में लाइए एक नया रंग, नए डिजाइन, खूबसूरत रंग और बजट फ्रेंडली कीमतें, सब कुछ एक ही जगह। इस गणेश पूजा अपने त्योहार के लुक को बनाइए और भी खास बिना बजट की चिंता के। तो आज ही आइए गोइंकास और चुनिए अपना पसंदीदा कलेक्शन। गोइंकास, हर त्योहार आपके स्टाइल के साथ।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत श्रोतों, आज इस कार्यक्रम के तहत सुनवा रहे हैं M. बाला मुरली कृष्णन का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वायलिन पर अन्नु वरप्पू रामास्वामी और मृदंगम पर श्री मूषणम वी राजा राव ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए M. बाला मुरली कृष्णन का कर्नाटक शैली में गाया राग कंभोजी, जो आदिताल पर निबद्ध है।

मिनिमम 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं।

कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आपके फरमाइशों के संदेशों से सजता है, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और अपने पसंद के गीतों के साथ हमसे जुड़िए इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं 9474234000। कार्यक्रम का नाम है SMS My Choice। गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और पते के साथ तुरंत हमसे जुड़े। हमें आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा।

नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम SMS माई चॉइस में। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम में बजते हैं वो गीत जिसकी आप फरमाइश करते हैं, जो कभी हमें बचपन की गलियों में ले जाता है, कभी किसी अपने की याद दिला जाता है, तो कभी कोई धुन हमारे चेहरे पर अनायास ही मुस्कान बिखेर जाती है। और जब आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर बज जाए तो उस खुशी का एहसास ही कुछ अलग होता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र में पढ़ते हैं आपके संदेशों में से एक पहला संदेश जो भेज रहे हैं ज़िला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। आपकी फरमाइश है आखिर क्यों फिल्म का गीत के लिए, और बोल हैं दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है।

सप्रेम नमस्कार के साथ जो जीता वही सिकंदर फिल्म के गाने के लिए फरमाइश करते हुए संबलपुर कांकेर से जुड़ रहे हैं हमसे कुछ दोस्त फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। तो सप्रेम नमस्कार के साथ हम भी आपसे आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। फिल्म है जो जीता वही सिकंदर और गीत के बोल है यहाँ के हम सिकंदर।

कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमांश हमसे जुड़ चुके हैं यहूदी फिल्म के गाने की फरमाइश के साथ। फिल्म है यहूदी और गीत के बोल हैं, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर।

सप्रेम नमस्कार के साथ कुछ दोस्त हमसे दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। आप सब ने धड़कन फिल्म के गाने की फरमाइश की है, तो हम भी सप्रेम नमस्कार के साथ आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। बोल हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो।

0: बस तुम रहते हो।
1: ड्रीम गर्ल फिल्म के टाइटल सॉन्ग की फरमाइश करते हुए ये हैं हमारे दोस्त सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से। तो चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत।
2: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: और अब कार्यक्रम में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का वक्त।
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
3: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले

0: की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हमसे कुछ दोस्त मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून गुजारिश कर रहे हैं कि हम उन्हें किसी भी गीत में शामिल करें। तो हम आप सबको शामिल कर रहे हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड के दोस्तों की फरमाइश के साथ। इन सब ने लिखा है, आदरणीय प्रसारक जी, प्यार भरा आदाब कबूल करें और दोस्ताना फिल्म का गीत सुना दीजिए। तो लीजिए, आदाब कबूल करते हुए पेश कर रहे हैं आप सबों के लिए दोस्ताना फिल्म का गीत। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।

घटे साक्षी घटे, अंजलि करवा बाला साहेब करवा, जयश्री मेहत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे की पसंद पर। फिल्म का नाम है रखवाला और गीत के बोल है मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया मुझे।

अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी पप्पी के। फिल्म का नाम है दिल चले और गीत के बोल हैं कितने।

0: हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें।
1: कम ऑन अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
2: हाँ, कम ऑन अरुण, कम ऑन, कम ऑन यार, कम ऑन यार, यार।
3: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
4: अरे ये क्या हुआ,
5: ये तो शम्माई बुझ गई।
4: अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया
1: क्या मालूम।
4: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं।
3: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

और अब कार्यक्रम का आखिरी एसएमएस, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जालंधर के दोस्तों के नाम, फिल्म लीडर और गीत के बोल, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं।

श्रोताओं, SMS माई चॉइस कार्यक्रम में आपके द्वारा भेजे गए पसंद के गीतों ने हमें एक बार फिर ये एहसास दिलाया है कि ये सफ़र जन्मों जन्मों का है। आप यूं ही हमें अपने संदेश भेजते रहिए, अपनी पसंद हम तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि आपकी पसंद और आपकी फरमाइशों से ही सजता है हमारा यह सुरीला सफ़र। जिन जिन दोस्तों की पसंद हम आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हैं, वो मायूस न हो, अगले कार्यक्रम का इंतज़ार करें।

मिरिमीर 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1369वीं कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्ट

0: लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें। और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।

0: हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
1: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।

0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
1: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
2: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
6: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
0: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में

0: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: के सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
1: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
0: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी,

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1369वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सुन रहे हैं सावन की घटा फिल्म से आशा भोसले की आवाज में। SH बिहारी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है OP नैयर ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा और रंक फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सावन भादो फिल्म का गीत। गीत वर्मा मलिक के हैं और संगीत दिया है सोनिक ओमी ने।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा रंग।

जी हसमत के बोलों के साथ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अब सुनवा रहे हैं उलझन फिल्म का गीत। आवाज़ें किशोर कुमार और

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या

0: फॉर एन्जॉयमेंट पर्पज़ नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पे कंटेंट बनाएं, और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाएं, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं। और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय, और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: चित्रगीत कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवा रहे हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।

हेलो, मैं हूं एचआईवी वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूं। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूं जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई

अभी आप सुन रहे थे हमारा मलयालम कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिन नोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। सुगम संगीत श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं प्रद्युमन

जो हम शहर में आए अपने देर तलक चाहने वालों से लिपट कर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के तहत प्रद्युमन शर्मा को। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। दोपहर के 1:30 हुए हैं।

व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो श्रोताओं, वक्त को न गवाते हुए कार्यक्रम का पहला पैगाम पढ़ रहे हैं। जीवन मृत्यु फिल्म के गीत झिलमिल सितारों का सावन होगा गीत के लिए मैसेज भेज रहे हैं। भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। तो आप सबके पसंद पर जीवन मृत्यु फिल्म का गीत झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर ने हमें भेजा है लिखकर। वो सुनना चाहते हैं दिल तेरा दीवाना फिल्म का गीत, बोल हैं नज़र बचाकर चले गए वो।

अगली पेशकश गाड़केनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे,

0: श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सुनेगा गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की फरमाइश पर वक्त फिल्म का गीत। बोल हैं ए मेरी जोहर अजबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवां।
1: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप के नाम जो भेज रहे हैं मैसेज हमें पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। अग्निसाक्षी फिल्म का नाम ओ यारा दिल लगाना, गीत के बोल।

0: गीत के साथ ही आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम से हम चाहेंगे इजाजत।
1: ओ जिया कह रहा मेरा जिया।
0: ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिन नोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेखणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफॉर्म

0: नॉर्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और चुनावी साक्षरता क्लब ईएलसी के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
2: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वेत्री कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,377 हो गई है। 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13,600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका

के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिदार, सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। और अब एक नज़र आज के मौसम के मिजाज पर। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अंडमान और निकोबार के कुछ भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, वहीं कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया गया है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और अंडमान निकोबार के तटीय क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिस कारण समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। इसलिए मछुआरों को 11 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये था आज का मौसम का मिजाज। इस समय दोपहर के 2:31:35 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: श्रोता दोस्तों, अब हम पेश कर रहे हैं आप सबके मनोरंजन के लिए कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं खूबसूरत और प्यारे प्यारे गीत। कार्यक्रम के दौरान हम एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी मनोरंजन का सिलसिला जारी रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ यूं ही। और अब चलिए शुरू करते हैं गीतों का सिलसिला और चल पड़ते हैं नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम के जरिए गीतों के सुरीले सफर पर।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: ये था नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज आपने सुने इम्तिहान, सर, गैम्बलर, राजा हिंदुस्तानी, बाजीगर, सैनिक और सिर्फ तुम फिल्म के गीत। और अब समाप्त होता है कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर एफएम श्री विजयपुरम। समय हुआ है 3:30। हर रोज की तरह आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और मैं हूं आपके साथ फातिमा। श्रोताओं, जीवन अनमोल है। एक पल ठहरना और अपनी बातें साझा करना किसी अपने के साथ बहुत ज़रूरी है। जीवन में मुश्किलें आती रहेंगी, कभी रिश्तों की, कभी कामकाज की, कभी पढ़ाई की, कभी आर्थिक परेशानियों की और कभी कभी अकेलेपन की। लेकिन कोई भी मुश्किल हमारे इस अनमोल जीवन से बड़ी नहीं होती। श्रोताओं, हर मुस्कान के पीछे खुशी हो ये ज़रूरी नहीं। हर हंसता मुस्कुराता व्यक्ति, कामकाजी व्यक्ति, लोगों के साथ खुश होकर मिलने जुलने वाला व्यक्ति खुश ही होगा, ऐसा हम अनुमान लगा बैठते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के पीछे छुपा हुआ दर्द, अकेलापन और डर हम कई बार देख नहीं पाते, क्योंकि कई बार वो अपनी परेशानियाँ छुपा लेते हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई मुझे समझेगा नहीं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे इग्नोर करेंगे, लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे और धीरे धीरे वो अपने मन की बातें अपने अंदर दबाने लगता है। जीवन अनमोल तो है, साथ ही साथ ज़िंदगी बड़ी हसीन भी है, और अगर ना हो तो हम इसे हसीन बना सकते हैं।

श्रोताओं, जब भी कभी हमें हमारे आसपास कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो पहले से ज़्यादा चुप रहने लगा हो, या फिर ज़्यादा बोलने लगा हो, या फिर लोगों से कटना चाह रहे हों, तो समझ लीजिए कि उसे किसी सहारे की, किसी अपने की बहुत ज़रूरत है। और तब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस व्यक्ति के पास कुछ देर बैठकर उससे ये पूछें कि तुम कैसे हो। और अगर वह कहे कि मैं ठीक हूँ, तो कहिएगा कि अगर सब ठीक नहीं भी है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी बात पूरी तरह सुनूंगा। क्योंकि हर दर्द को शब्दों की ज़रूरत नहीं, कभी कभी बस किसी अपने की मौजूदगी ही काफ़ी होती है।

कई बार जिंदगी में मुश्किल पलों का हमें सामना करना पड़ता है, तब हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, मन का थकान बढ़ रहा है। लेकिन मुश्किल समय तो अस्थाई होता है। कुछ पल के लिए समस्या का समाधान हम नहीं ढूंढ पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाधान है ही नहीं। कभी कभी हमें बस कुछ पल रुकने की ज़रूरत होती है, एक गहरी सांस लेकर सोचने की ज़रूरत होती है और ज़रूरत होती है किसी अपने से बात करने की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। अगर शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब मन बहुत परेशान हो तब मदद लेने में शर्म कैसी। किसी भरोसेमंद परिवारजन या दोस्त या कोई मेंटर या फिर सहकर्मी से बात करने से समस्या का समाधान निकल आता है। मन की बात कहना भी उपचार की शुरुआत हो सकती है।

0: आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला में नीरोक्रेहामांग इंग्रेता का लमक तेलंगम मीडियम वेव तो 438.6 मीटर हेक 684 किलो हर्ट्स रमांगलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम मनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।

0: ngatsol nop kaningen himin na ikuang ipanam. Tasane, yehi ay ngechket ngam alahare. Ay arhuhu, ay heta tita e. Ngatsngati ay ngechket ngam mental health re inti. Yehi rung ay wahawa chakku alaha ngatsu in ap doctor ayia. Hohi ay lakin. Ngat yehi pari ay kihngen elun. Ngat siti ayia ay atwe eng kanihngen elun re inyip hul re. Hek inyip ahpati re inti. Ye me ke in yerken re in yip hol re apati re inte re angu na weakness me pan nature hi ayi atarik ikuangi panam achi hip tat ki ngen ikuangi panam ye hi ro khare ki ngen ikuangi panam lekten ai ve en ap kani ngen re in yip hol re ek apati re inte ho chamin na halak tit me ikuangi panam
1: ये में मक अब तक इंगेन अलोन ने इन रे हे खारी वलोन तारीख ना छों सिटी इन लाहेन में अम हायर कैन ओं
0: तारो खरे आकार निकोबार हेर इन आई अ अत आका हकुओ तब तारीख तो ओ ये ओन की हिंगेन ने इन उपला एन रे पोही ऐ मक ओ नंग राम अलोन में ने इकुए ही लगतेन आई ऐ के न्यारे तक रे ऐ हाते ना ओ ऐ गरो सिटी अप इन लाहेन में ना छाते ना ओ आई अ तो ओ ये ओन को एन नवायन गच हातेन ओ इंट्री ये ओ नकी हिंगेन एलून गच हातेन अब रीजन अब कानी हिंगेन एलून ओ इंट्री गच येन वे एन कानी हिंगेन रे अब तारिक उह आई इलारेन आइंगरो इन ओ हंग इलारेन मन कॉल अम की हिंगेन एलून नेच के लाइफ हिप ता हैंग होल रे मन गच हाके प उ इंट्री हंगे करे हंगन रे मन उन के तुनुप तत्लंग ने इन गम एलकुई में
1: असुनुप लाइंगेन गोनी हेक राल न लंग नम मेंटल हेल्थ ओ
0: नी अन रोचु तारो खर आकार निकोबार रे इन अयंग असक करन गम सुसाइड फिनेल गरे इंट्री पोहे इंट्री आई नेच का इन ला हेन रे आई तारिक हेक स्ट्रगल आई इनुपला एन रे हो ही मिन आई सक्सेस आई मी हो ही मिन आई वायत इन रिकन रही इकुंगी पानम रे तसाने येन कुवनन मार्क्स यिप कुवन ही न एल स्कूल हेक एल कॉलेज इंट्री गाइट उनगलोन चा आतर गाइट नंग अ फ्यूचर गाती यिप ततुंगन तकिन मान गाइट उन किहंगन अलोन तन पोयन नुन मिने ताले कचुक चा मिन हेक ना आ नोमरे फेर इन आई अ तारिक इकुंगी पानम तरे ऐ हंगरा मलून गच हेक की हिंगन अलून हेक मिहोय हेक अत मिहोय हेक लेंग तालक हेक अत लेंग तालक र अप परी ये ही अत महकु तब तालक करे गच नेच के नम लाइफ रे आई फेर इन आई कामे त तह तालक तारिक हाचो ओकुचा त तालक तालक गच हायर केनचा इनुप कानी हिंगनचा हेगी तंगामु रेता का इनफेक वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन टी के तंगी चिन तरह है यिन किलेंगो इन ये आ कार्निकोबार उह यिन इलेक्ट्रोर है वे एको होल रे गाज यिप ता मेंटल हेल्थ इन्टे उह चा नहाये ऐतायी गाज यिप ता रिवी नहा आ नॉमर नकेला एंड उह चा नंग इ उकुंडर निये अंगु अंतंगामु तकालेंगी रो इन ही रोखरे तारो खरे आह कानी को बार उन कन्नुप कानी हेन रे हेंग तका तनवे ऐ नंग अब तारिक अब तरात एलोन रे ने इन में तसाहुल में यंग में मरिंगला त में टीचर में हेक चुक में ये में लाओरेन त इम्पोर्टेन नुप इन रे कानी हेन में लतन में अम वे ऐ नंग चा र इन आई ऐ हेंग सुमकम ऐ सॉल्व नंगेन नुप कानी हेन अब तारिक हंग मिका त एलोन ओ परी आई त ओ नंग अत हेंग तका ने इकुंगी पानम मना अन्नी रोचु इन ये आह कानिकोबार परम अब सिंगुल ने ये अत हो परी ऐ अत मुक्तावुए मिन परो ने कानी हिंगन ने ये ने इन ही गच गती इन रे गमराना मलोन ने ये ने इन ही तलत्तेन आई हायर केन है इनुप कानी हिंगन उ इग्नोर हा ओ इनते ऐ कुन्या एलमत हा
1: होय मांगरो रमन अम के तकिन लेंगो अभी वे तारिक इरे तक किने के नि सकाम इन तंगम
0: ताते किले ngore इंगरे तक वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे तंगम तही मिन ऐ अरह हंगरो हा हंगी तरे तरो हा इनुप कानिंगन हाय

0: Ngamana tayi hangi tin kaga na di kagnya Martha Hillary a urika. Hoye ngatel ngangin sen ngay tangamu, hek inurit e hang rongi taka saata, ita kausin kain rorong ti talapuhu ngayin.
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं पेश है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की सातवीं कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Pradyogik technology ke fayde aur nuksan, advantages and disadvantages of technology. Aaj ki 21vi shatabdi mein hum technology ke zindagi mein jee rahe hain. Aaj takneek ke bina jeevan ki kalpana karna mushkil hai. Parivahan ke liye hum car, bus, motorcycle, plane, train ka istemal karte hain. Apne mitron, parivar se baat karne ke liye फोन का इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन के लिए अब तो एलईडी टीवी हमारे पास है। रसोई में खाना, ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, इंडक्शन चूल्हा जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर की सजावट के लिए आज अनेक तरह के आधुनिक तरह के लाइट्स का इस्तेमाल होते हैं। गर्मी सर्दी के मौसम में राहत देने के लिए अब एसी, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत प्रचलित हो गया है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर घर में एसी रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज विज्ञान की मदद से टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। अब हमको बिजली, टीवी, पंखा, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे आधुनिक चीजों की आदत हो गई है। हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे प्रचलित टेक्नोलॉजी उपकरण और सेवाएं, दैट इज कॉमन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज बाय अस, घरेलू उपकरण, पंखा, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक पानी का मोटर, इन्वर्टर, जनरेटर, बिजली सप्लाई, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घरेलू काम के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, कैमरा, संचार के लिए इंटरनेट सेवा, मनोरंजन के लिए टेलीविजन, सिनेमा, कपड़े धोने और सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन्स, संचार यानी बात करने के लिए फोन, टेलीफोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, रसोई घर के लिए ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन स्टोव, स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाएं और आधुनिक चिकित्सा तकनीकी और सेवाएं जैसे एक्सरे मशीन्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: टेक्नोलॉजी के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब तो घर बैठे ट्रेन, प्लेन, बस का टिकट खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अब अनेक ऐप से ट्रेन की स्थिति, विलंब स्थिति, अन्य जानकारी पा सकते हैं। घर बैठे शिक्षा। अब विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के कोर्स ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इस तरह घर बैठे शिक्षा पाना संभव हुआ है। आज अनेक वेबसाइट पर लोग पढ़ाने का काम करते हैं। विद्यार्थी घर बैठे वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब महंगी फीस देकर ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्री कॉलिंग और फ्री वीडियो की सुविधा भी है। आज कई नेटवर्क्स कम शुल्क में अच्छी और फ्री वीडियो और कॉलिंग सुविधा दे रही है। आजकल हम अपने मित्रों, प्रियजनों से असीमित मात्रा में बात कर सकते हैं। पहले ये संभव नहीं था क्योंकि फोन सेवाएं बहुत अधिक महंगी थी। अब हम वीडियो फ्री में अपने फोन या कंप्यूटर में देख सकते हैं। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं। घर का काम हुआ आसान। अवन, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन चूल्हा जैसे उपकरणों ने रसोई का काम सरल बना दिया है। आज की गृहिणी यानी होम मेकर्स वॉशिंग मशीन से कपड़े धोती है, इस तरह उसकी मेहनत बचती है। घर में रोशनी। अब एलईडी तकनीक वाले बल्ब बाजार में आ गए हैं जो बहुत कम बिजली लेकर अधिक रोशनी देती है। इस तरह बिजली की बचत होती है और देश के गांव-गांव में बिजली जा रही है। लोगों को बिजली के खर्चे में बहुत बचत हुई है। अब देश में अधिकतर महिलाएं गैस पर खाना पकाने लगी है। इससे उनको धुआं नहीं लगता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से गैस के नए भंडार की खोज हुई है। गोबर और कचरे से भी रसोई गैस बनाने की तकनीक बनाई जा रही है। सीएनजी गैस के इस्तेमाल आजकल हर मेट्रो सिटी में बस और अन्य वाहनों में हो रहा है। इससे वायु प्रदूषण कम हुआ है। आजकल डेंगू, मलेरिया, खासकर चिकनगुनिया, कैंसर, ओवेरियन डिजीज, टीबी, एस्मा, इनफर्टिलिटी और कई सारे डिजीजेस हो रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में रोज नए नए शोध और खोज हो रही है। इससे हमें बहुत लाभ हुए हैं। चिकित्सा की नई टेक्नोलॉजी आ जाने से भारत में मृत्यु दर में गिरावट आई है। दैट मीन्स द डेथ रेट हैज गॉन डाउन।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: तो दोस्तों, इसके नुकसान भी हैं। आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी के नुकसान ये है कि हिंसा, खून खराबा वाले वीडियो गेम आजकल हर बच्चे खेल रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर इसके नुकसान भी बहुत है। आज छोटे बच्चों को भी इंटरनेट की लत लग गई है। आजकल बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सारा दिन फोन या कंप्यूटर पर ही चिपके रहते हैं। बच्चे घर के काम और जिम्मेदारी से भी बचने लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर सारा समय नष्ट कर देते हैं। अपने कीमती समय का इस्तेमाल अगर बच्चे पढ़ाई में करें तो उनको बहुत फायदा होगा, उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे ज्यादा वक्त चैटिंग और वीडियो देखने में बिताते हैं, इस तरह उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आजकल हैकर्स हमारे इंटरनेट बैंक अकाउंट के खाते को हैक करके

0: पैसे की चोरी करते हैं। आए दिन ऐसी खबर आती रहती है, कुछ चोर एटीएम कार्ड बदलकर क्लोन बनाकर हमारे पैसे चुरा लेते हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी ने भी हमारी समस्याएं बढ़ा दी हैं। आज लुटेरे और चोर हमें फर्जी कॉल करके परेशान करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ओटीपी नंबर पूछते हैं। आज के लम्हे प्रोग्राम में हमने आपको टेक्नोलॉजी के अनेक फायदे और नुकसान बताए हैं। हमें इसका इस्तेमाल सोच समझ कर मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। वेल, with this message, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, bye.
1: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039. I repeat 09515227039. और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की सातवीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:40 होने को है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:45 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5:00 और बांग्ला कार्यक्रम सुन पाएंगे 5:30 पर। किसान वाणी कार्यक्रम के तहत संध्या 6:00 महिला कृषक श्रीमती एस पुष्पालता से बातचीत होगी। विषय रहेगा स्वयं सहायता समूह की भूमिका और रोजगार के अवसर। 6:30 पर कार्यक्रम होगा महफिले कवाली। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार, मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएँ आप सुन पाएंगे 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम पत्रिका युवा संसार। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। रात्रि 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश से आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि 9:10 पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब एक नज़र हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स में जानकारी का विषय रहेगा कटाई उपरांत सब्जियों की देखभाल। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम में 6:15 पर शीर्षक होगा तराना। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस गान। 6:40 पर गांधी चर्चा की 10वीं कड़ी सुनवाई जाएगी। 7:15 पर सुनेंगे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी। जबकि FM 100.9 MHz पर कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे विशु भटनागर और भूपेंद्र।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा सुबह 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी वादन प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे सुनिए कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का समय रहेगा दिन के 11 बजे। निकोबारी कार्यक्रम का समय होगा दिन के 11:30 पर। दोपहर के 12 बजे सुनिए तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 पर सुनिए मलयालम कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम महफिले कवाली का समय रहेगा 1:10 पर। 1:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी तत्पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर लाइव फोन आउट फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स। 3:30 पर कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम के तहत संध्या 6 बजे कृषक डॉक्टर घनश्याम पांडे से बातचीत होगी। विषय रहेगा कंपोस्ट बनाने का सही तरीका। 6:30 पर कार्यक्रम होगा समाचार तरंगिनी। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का समय रहेगा संध्या 6:45 पर। 6:55 पर सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी का समय रहेगा 7:30 पर। रात्रि 8 बजे सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत रोजगार समाचार गौरव गान आप सुनेंगे 8:30 पर। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:45 हुए हैं। श्रोताओं पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों से, जिनकी रचना की है दिलीप ने। फिल्म का नाम है अलबेला।

अगला गीत सुनिए कोयला फिल्म से, जिसे स्वर दिया है कुमार सानू और अलका याग्निक और साथियों ने। गीत के बोल इंदिवर ने लिखे हैं, जिसे संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स

0: इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स और 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: उद्भव मनोहर शेट्टी, ईशान और साथियों की आवाजों में लीजिए सुनिए जतिन ललित का संगीतबद्ध किया तथा आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है मोहब्बतें।

0: अभी आप बहारों की शाम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। श्रोताओं, पेश है तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழமுதம். வணக்கம் நேர்களே.

0: श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5:30 होने को है। श्रोताओं, पेश है बांग्ला कार्यक्रम।
1: नमस्कार, शुभ सन्ध्या। আমার সকল শ্রোতা বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে।

0: श्रोताओं, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजने को है। श्रोताओं, पेश है किसानवाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर अब तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को सुकमीत का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। किसान साथियों, सोच ही मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव, आदतें और जीवन शैली का आधार है। और हमारी सोच ये निर्धारित करती है हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं और किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में हमारी धारणा कैसी होगी। सोच के आधार पर ही हम गुणों और अवगुणों का विश्लेषण भी करते हैं। साथियों, आज के इन्हीं विचारों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। किसान भाइयों, आज आपको बताना है कि एक ट्राइको कार्ड में परजीवियों के लगभग कितने अंडे होते हैं। प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। हमारा आज का प्रश्न है कि एक ट्राइको कार्ड में परजीवियों के लगभग कितने अंडे होते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों, समय समय पर भारत सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारी किसान कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं और इन योजनाओं के तहत लाखों किसान इसका फायदा भी उठाते हैं। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो चलिए भाइयों, ले लेते हैं इस संदर्भ में कुछ जानकारी।

किसान भाइयों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज दिया जाता है। इस योजना में परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल हर महीने मिलता है, साथ ही 1 किलोग्राम साबत चना दिया जाता है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 2 योजनाओं से मिलाकर बनाया गया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू योजना।

0: के लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। दोनों योजनाएं मिलाकर नया नाम 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण कराने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो की वेबसाइट पर जाएं, जिसके बाद PMGKY के आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद बैंक डिटेल व मांगी गई अन्य जानकारियां भरें। सबमिट कर क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा
1: और पंजीकृत होने के बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न मुफ्त देने का निर्णय सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2024 को लिया गया और इसे अगले 5 वर्षों के लिए यानी दिसंबर 2028 तक जारी रखने का प्रावधान है। इस योजना के तहत मुख्यतः 2 श्रेणियां हैं, प्राथमिकता वाले परिवार PHH जिसमें प्रति पात्र व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह मुफ्त पाएगा। इसके अलावा अंत्योदया अन्न योजना परिवार, इसके तहत अंत्योदया परिवार को 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह मुफ्त मिलेगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं गरीब परिवार पर खाद्यान्न खरीदने का आर्थिक बोझ कम करना, देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, गरीब और कमजोर वर्गों को नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना। तो साथियों, ये योजना गरीबों के कल्याण के लिए है और उन्हें मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। तो जरूरतमंद परिवार इस योजना के साथ अवश्य जुड़ें और इसका लाभ उठाएं।

साथियों, अभी आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में ये जानकारी हासिल की और अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मक्का पहाड़ की रहने वाली श्रीमती एस पुष्पलता जी से, और इनके साथ आज बातचीत का विषय रहेगा स्वयं सहायता समूह की भूमिका और रोजगार के अवसर। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं कि ये स्वयं सहायता समूह से जुड़कर किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं।

0: एस पुष्पलता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा आज का विषय है स्वयं सहायता समूह की भूमिका और रोजगार के अवसर। पुष्पलता जी, सबसे पहले आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से कैसे जुड़ी?
1: नमस्कार मैम, मैं 2019 में सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज्वाइंट हुई मैम, और उससे पहले से मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, और उसमें जो है मुझे रोजगार का अवसर दिया उसमें। जैसा कि मैं ब्यूटिशियन, ऑलरेडी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया था, 2008 से मैंने किया था। तो उसके बाद मुझे एक मैम है मेरी, संगीता मैम, वो मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ सिखा सकते हो, बाकी को रोजगार मिलने का एक अवसर दे सकते हैं ना, जैसे कि मैं उनको बता सकती हूँ कैसे सीखना है, क्या करना है। इसीलिए मैंने फिर वहाँ में आके उनको सिखाना शुरू किया। एक 6 मंथ का कोर्सेस होता है, तो मैंने वो कोर्सेस वहाँ दिया
0: जी।
1: तो बहुत, कम से कम मैंने 3-4 क्लासेस लिया। उसके बाद वहाँ में उसमें से कम 4-5 जन तो शुरू कर भी चुके थे, पार्लर में काम भी कर रहे थे। और इसमें जो है आपको खुद से इंटरेस्ट लेके आपको करना होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी आए सीखे और गए।
0: आपको ये इंटरेस्ट कब लगा कि ये हम अपना ब्यूटी पार्लर खोले?
1: एक्चुअली मैम, फादर आके नेवी में थे, तो
0: अच्छा।
1: वहाँ में आके डिफेंस को इस तरह कोर्सेस वगैरह दिया जाता है, टेलरिंग का और ब्यूटिशियन का वगैरह।
0: तो आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया?
1: हाँ, फादर, मदर, दीदी तीनों ने बोला कि मुझे इंटरेस्ट ऑलरेडी पहले से ही था, तो दीदी ने बोला कि तुम जाके वहाँ सीखो करके। तो मैंने वहाँ सीखा 2008 में, तो उसके बाद से मैं घर पर ही करती थी। पहले क्वार्टर में हम रहते थे, वहाँ में अगल बगल वाले के ऊपर प्रैक्टिस करती थी, पैसे लेकर नहीं करती थी, प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि पहले ये सब,
0: आपका खुद का शौक था
1: हाँ,
0: पहले?
1: खुद का शौक था। तो प्रैक्टिस किया मैंने पहले, उसके बाद में मैंने क्लासेस लेना शुरू किया पार्लर। फिर यहाँ मक्का पड़ आने के बाद में मैंने पार्लर खोला।
0: कहाँ कहाँ आपने क्लासेस लिया और कहाँ कहाँ पर आपने ये ट्रेनिंग?

0: दिया है
1: मैंने ट्रेनिंग आके दिया है युवा शक्ति में,
0: जी
1: उसके बाद मैंने ट्रेनिंग दिया है SBI में,
0: जी
1: फिर NCY के तरफ से मैंने वहाँ भी ट्रेनिंग दिया है SHG ग्रुप्स को। और उसमें जो है, अगर इंटरेस्ट है तो तभी हम कर पाते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आएंगे जाएंगे बैठेंगे, बस वही होता है। कभी भी कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो उसमें मेन चीज़ है इंटरेस्ट,
0: बिल्कुल
1: आपको इंटरेस्ट नहीं है आप कुछ नहीं कर पाते हो।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना, पार्लर में आते हैं तो कोई कोई कस्टमर खुश होते हैं और कोई कोई
1: जी जी
0: कस्टमर जो है नाराज होके चले जाते हैं, तो
1: जी
0: फिर ये दोनों को आप कैसे संभालते?
1: नाराज तो मैम मोस्टली होते हैं कि थ्रेडिंग में,
0: हाँ जी
1: थ्रेडिंग में तो आपको ही पता होगा, थ्रेडिंग में हर कोई नाराज हो जाता है, तो उनको बताते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम में आएंगे हम लोग और अच्छे से करके देंगे, उनको वैसा तसल्ली देना होता है, क्योंकि वो एक दो होता है चूक हो जाता है कभी कभी।
0: वही, जब हम काम की शुरुआत करते हैं
1: जी
0: तो स्टार्टिंग में तो गलती होता ही है,
1: जी
0: पर बाद में उसको हम लोग अपना जो पैशन जो हम लोग का है कि हम लोग को करना है, इससे आगे हम लोग को बहुत बढ़िया बेहतर अपना कस्टमर को दे सके, तो उसके लिए तो कस्टमर के लिए हम लोग अपना अच्छा ही देते हैं, अपना जो
1: जी
0: है बेस्ट देते
1: जी
0: हैं
1: फर्स्ट टाइम में होता है, उसके बाद फिर बेस्ट देने की कोशिश करते हैं मैम।
0: जी। अभी भी आपका पार्लर
1: जी
0: में
1: चल रहा है
0: काम कर
1: मैम।
0: रहे हैं?
1: जी
0: कहाँ पर है?
1: मक्कापार में।
0: मक्कापहाड़
1: जी अब
0: में।
1: बच्ची छोटी है इसलिए मैं घर पर ही चलाती हूँ, घर पर,
0: अच्छा
1: एक बाहर में वरांडा में एक छोटा सा पार्लर जैसा रखा है, सेट किया है। आते हैं बीजेपी लोग सीखने के लिए आते हैं, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो उनको देकर फिर मैं बाहर जाती हूँ, या फिर बाहर से अगर कोई मुझे कॉल करता है कि मुझे ये मेकअप करवाना है, फेशियल करवाना है, तो मैं घर जाकर भी कर कर देती हूँ।
0: घर घर जाकर भी आप
1: जी
0: फेशियल कराते हैं,
1: जी
0: तो उसके लिए आपने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया था कि ऐसे कांटेक्ट
1: कांटेक्ट मैम,
0: कांटेक्ट
1: जी
0: दिए
1: सबको
0: थे?
1: कांटेक्ट दिया था मैंने,
0: अच्छा
1: तो उसी के थ्रू चल रहा है, या फिर मैं एक जन को करती हूँ तो वो आके दूसरे को रेकमेंड करते
0: ब्राइडल
1: हैं।
0: मेकअप के लिए भी जो है
1: जी
0: बहुत जन को बुलाया जाता है,
1: जी
0: जैसे शादी सीजन होता है, वेडिंग सीजन में तो मेकअप आप करते हैं?
1: जी कल भी मुझे एक मेकअप मिला था, तो कल मैंने किया था
0: ब्राइडल
1: जी ब्राइडल मेकअप का।
0: जी। जब आप ब्यूटिशियन की शुरुआत किया था तो आपने लोन लेके स्टार्ट किया था?
1: जी मैम SHG से मैंने लोन लिया था मैम, लोन लेके मैंने फर्स्ट अपना चेयर लिया, उसके बाद एक बेड लिया, मिरर लिया, वो सब लेके मैंने SHG के थ्रू मैंने किया, क्योंकि कम बजट में मैं करना चाहती थी मैम, तो हस्बैंड आके ट्रैवल्स फील्ड में है तो हमारा बजट उतना कम रहता है, तो इसीलिए मैंने वहाँ से लोन लिया, लोन लेके मैंने पार्लर शुरू किया अपना। SHG की तरफ से मुझे बहुत सारा मदद मिला,
0: तो आपने घर से शुरू किया था कि अपना खुद का शॉप खोले थे आप
1: घर से
0: लोन
1: किया
0: लेके?
1: मैम,
0: घर से
1: घर
0: स्टार्ट
1: से
0: किए
1: शुरू
0: थे?
1: किया मैम।
0: अभी आपका मक्का पहाड़ में खुद का शॉप है?
1: जी
0: अच्छा, वो शॉप का नाम क्या है?
1: पुष्पा ब्यूटी पार्लर।
0: पुष्पा ब्यूटी पार्लर।
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है। पुष्पलता जी, बताइए कि अगर कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करे, कैसे आगे बढ़े?
1: मैम सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग लेना होता है, एक है 6 मंथ का होता है, 1 साल का होता है, और 2 साल का भी होता है, तो ट्रेनिंग ले, उसके बाद में प्रैक्टिस करे,
0: ट्रेनिंग
1: प्रैक्टिस
0: आप देते हैं?
1: ट्रेनिंग मैं भी देती हूँ, बाहर भी देते
0: अच्छा
1: हैं,
0: अच्छा
1: उसके बाद उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करने के बाद जो सर्टिफिकेट होता है उसे वो इंडस्ट्री में जाके अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई करने के बाद में फिर हम लोग पार्लर खोल सकते हैं मैम, लोन भी मिल जाता है और वहाँ अप्लाई भी हो जाता है हमारा।
0: पार्लर में ऐसे भी होता है ना कि हम जब पार्लर में आते हैं तो बहुत स्किन के लिए जो फेशियल करवाते हैं तो हाइजीन का बहुत महत्व दिया जाता है।
1: मैं मैम टॉवल वगैरह जो भी यूज़ करती हूँ सैनिटाइज करके रखती हूँ,
0: हाँ जी
1: सेम जो टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं हर कस्टमर के ऊपर यूज़ नहीं करती हूँ, सबके ऊपर अलग अलग होता है मैम, और मैं जितना भी हो सके टिश्यू वगैरह जो रहता है यूज़ एंड थ्रो वाला ही यूज़ करती हूँ, जो कि ये नहीं कि एक के ऊपर यूज़ किया दूसरे के ऊपर, वैसा नहीं।
0: आज के समय में आपके पार्लर में भी कौन कौन से नए ट्रेंड्स जो है चल रहे हैं?
1: कोरियन फेशियल एक है,
0: जी
1: उसके बाद में D10
0: बोलिए।
1: का फेशियल कर सकते हैं मैम, O3 होता है, फिर D10 का अलग से होता है कि फेशियल, खाली ब्लीच भी होता है D10 ब्लीच, मतलब उसमें एक्टिवेटर वगैरह नहीं होगा, सिर्फ D10 होता है, वो कर सकते हैं, उसके बाद आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर किसी किसी के ऊपर स्किन के ऊपर होता है बहुत सेंसिटिव स्किन होता है, उनको आके क्रीम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनको मैं होममेड वाला भी करके देती हूँ
0: पहले
1: पार्लर में जो
0: कस्टमर
1: आते हैं।
0: आपके पार्लर में आते हैं तो आप उनसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि
1: जी
0: आपका स्किन कोई सेंसिटिव है क्या है?
1: पूछते भी हैं, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनका कैसा स्किन है, और जो हमारा जो एरिया है वो विलेज टाइप है, और वहाँ के कस्टमर को तो मोस्टली पता ही नहीं होता है कि उनका कैसा स्किन है, उन लोग इतना तक कि नहीं पता होता है कि धूप में जाने से सनस्क्रीन भी लगाना होता है करके, तो उन स्किन को मैं एनालाइज करके बताती हूँ उनका कैसा स्किन है, कौन सा फेशियल उनको यूज़ करना चाहिए, या फिर कौन सा क्रीम उनको यूज़ करना चाहिए।

0: सनस्क्रीन वगैरह सबके बारे में मैं बताती हूँ मैं
1: सबके बारे में आप डिटेल से उनको स्टेप बाय स्टेप बताते
0: जी।
1: हैं कितने टाइप के आप हेयर कटिंग करते हैं।
0: यू कट होता है मैम, वी, स्टेप, लेयर, बटरफ्लाई, मल्टी मल्टी स्टेप सब करती हूँ मैम।
1: आपके पार्लर में अगर कोई हेयर फॉल के लिए आता है तो फिर आप क्या करते हो।
0: मैं इनको हॉट ऑयल मसाज देती हूँ मैम, उसके बाद स्पा देती हूँ, हॉट टॉवल बाथ देती हूँ मैम उनके हेयर के लिए। उसमें आके वीकली वंस आते हैं, करा कर जाते हैं मैम, उनसे जो है हेयर फॉल कम होता है।
1: आखिरी में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे महिलाओं को बताइए कि वो अपने घर के काम से बाहर निकल के अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े।
0: मैम जैसे कि SHG ग्रुप वगैरह रहता है, हम अगर उससे जुड़ते हैं तो हमें बहुत सारा कुछ कोर्सेस वगैरह सीखने को मिलता है, जैसे कि अचार बनाना है, उसके बाद टेलरिंग क्लास है, ब्यूटिशियन है, पोल्ट्री फॉर्म का है, वो सारा बिजनेस हमें सीखने को मिलता है। वो कोर्सेस हम लेकर हम घर से ही बिजनेस कर सकते हैं। कुछ महिला होती है जो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती है,
1: तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे, उनको कैसे आप प्रेरित करेंगे।
0: मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा जो एक 10 महिला के साथ में बैठकर बात करने की बजाय हम कुछ कोर्सेस सीखे, जैसा अभी कुकीज़ है, केक्स बनाना है, ब्यूटिशियन है, टेलरिंग, वो सारा कोर्स सीखे कोई भी एक जो जिसमें उनको इंटरेस्ट है। बिना इंटरेस्ट का तो कुछ नहीं कर पाते, इंटरेस्ट जिसमें है वो सीखे, सीख कर घर बैठे कुछ भी करे इनकम।
1: अपना खर्चा निकाल
0: हाँ,
1: सकते हैं,
0: अपना
1: साथ में
0: घर का
1: घर
0: निकाल
1: का
0: सकते
1: अपना
0: हैं।
1: खर्चा
0: जी
1: निकाल सकते
0: जी मैम
1: हैं। पुष्पलता जी, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर ब्यूटिशियन का काम किया, अलग पहचान बनाई। चलते चलते आप तमाम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी।
0: मैम, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो SHG ग्रुप से जुड़ते हैं उनको जो कोर्सेज दिया जाता है वो सीखे, ब्यूटिशन का कोर्स सीखे, जो कि घर बैठे वो काम कर सकते हैं, तो उनका इनकम सोर्स बढ़ता है, तो क्या घर में अपने फैमिली में मदद कर सकते हैं, आर्थिक उनका बढ़ता है उसमें।
1: जी, बिल्कुल। तो पुष्पलता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

स्वयं सहायता समूह की भूमिका और रोजगार के अवसर। किसान साथियों, अभी आपने इस विषय में श्रीमती एस पुष्पलता जी से की गई ये बातचीत सुनी और जाना कि वे स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर किस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। भाइयों, अब इतनी बातों और जानकारियों के बाद अब आपका कुछ मनोरंजन हो जाए, तो चलिए मनोरंजन के बहाने आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

ध्यान रखना है। और साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, कार्यक्रम के आरंभ में आज हमने आपसे पूछा था कि एक ट्राइको कार्ड में परजीवियों के लगभग कितने अंडे होते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर है एक ट्राइको कार्ड में ट्राइकोग्रामा परजीवी के लगभग 5000 अंडे होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

0: और साथियों, इसी के साथ बातों और जानकारियों की किसानवाणी की इस संध्या को अब हम यहीं पर समेट लेते हैं। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सुखमीत को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम महफिले कवाली। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए महेंद्र कपूर, प्रवीण सभा और साथियों की आवाज़ों में, जिसे संगीत से पिरोया है सोनिक ओमी ने। फिल्म का नाम है जुल्म का बदला।
7: ये उम्र ये मिजाज खुदा खैर करे, किसका है कत्ल आज खुदा खैर करे।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं सहीर का लिखा गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

राहुल देव बर्मन के तर्ज पर बने ये है चांदी सोना फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और साथियों ने।

0: किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में सुनवा रहे हैं आपको कसम खून की फिल्म का गीत। वर्मा मलिक के लिखे गीत को धुन से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: अरे भारत की सब कौमों का, भारत की सब कौमों का पल भर में मेल हो जाए।
2: लेकिन कैसे?
1: ऐ मालिक अगर ये सारी दुनिया ही जेल हो जाए।
2: बात तो ठीक ही है।
3: वाह भाई वाह, क्या बात है।

किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और सुरेश की आवाज़ों में ये है बदले की आग फिल्म का गीत। बोल वर्मा मलिक के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

बदले की आग फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम महफिल कवाली अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं। आइए आपको आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें।

0: रात्रि 10 बजे सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी।
2: एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां होगी मुख्य बीमारियों की जांच, विशेषज्ञ परामर्श आदि। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत, जिसमें महिला और बच्चों के पोषण, सीमित तेल और चीनी के सेवन एवं मोटापे के नियंत्रण आदि पर जोर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलेगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी मानवता के हित में 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य। वाणिज्य मामलों के संसदीय स्थायी समिति कल से द्वीप समूह के 4 दिवसीय दौरे पर राजधानी श्री विजयपुरम और स्वराजद्वीप में अधिकारियों व हितधारकों के साथ होगी बैठक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में नई तकनीक का उपयोग, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को मिला परम शावक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम और स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का 5वां संस्करण 12 सितंबर से देश भर के साथ द्वीप समूह में होंगे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी आज पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक आंकड़ों का उपयोग पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ पूरी मानवता के हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सदियों से मानव की कल्पना को प्रेरित करता रहा है और आज जलवायु, कृषि, महासागर तथा समुदायों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के जरिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना, जबकि आदित्य L1 मिशन सूर्य के रहस्यों को समझने में मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष एक भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। भारत का लक्ष्य 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। वाणिज्य संबंधी विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति कल से 12 सितंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेगी। समिति इस दौरान राजधानी श्री विजयपुरम और स्वराजद्वीप का दौरा करेगी। दौरे के दौरान समिति वाणिज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के साथ बैठक करेगी तथा स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी लेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए पूरे सरकारी तंत्र और समाज की भागीदारी का दृष्टिकोण अपनाया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माता एक मंच पर आएंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विज्ञान अब केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रह सकता। वैज्ञानिक अनुसंधान को सफल, टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए संचार, प्रबंधन और बाजार

जुड़ी विशेषज्ञता भी जरूरी है। 3 दिन का यह सम्मेलन 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम और सुरक्षित सागर अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र श्री विजयपुरम को परम शावक उच्च क्षमता वाला कंप्यूटिंग सिस्टम प्रदान किया गया है। वर्ष 2015 में शुरू किया गया यह मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य नेशनल नॉलेज नेटवर्क के जरिए तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है। इस सिस्टम के जरिए उन्नत कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में संस्थागत क्षमताएं मजबूत होंगी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण इस कंप्यूटिंग सुविधा का उपयोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए करेगा। इसके तहत 836 द्वीपों में फैली हजारों पशु और समुद्री प्रजातियों की पहचान, निगरानी और सूची तैयार की जाएगी। साथ ही जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान का मूंगा चट्टानों तथा समुद्री जीव जंतुओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। DNA बारकोडिंग के जरिए नई और लुप्त प्राय प्रजातियों की पहचान के लिए बड़े पैमाने पर आनुवंशिक आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जाएगा। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का 5वां संस्करण 12 से 19 सितंबर तक देश भर में आयोजित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य समुद्र और तटीय क्षेत्रों को स्वच्छ रखने तथा समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। अभियान का शुभारंभ 1 सितंबर को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ जितेंद्र सिंह ने किया। अभियान के दौरान तटीय क्षेत्रों में साइकिल रैली, मैराथन, मानव श्रृंखला, समुद्र तटों की सफाई और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 18 सितंबर को विद्यार्थियों और युवाओं के लिए पहली राष्ट्रीय महासागर ज्ञान प्रतियोगिता होगी। अभियान के अंतिम दिन 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर देश भर में 100 से अधिक स्थानों पर समुद्र तटों की सफाई की जाएगी। विद्युत विभाग के अनुसार 12 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक SBF जी फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत लाइनों की सफाई और झाड़ियों की कटाई छंटाई तथा कम वोल्टेज की ABC केबल बदलने के काम के कारण यह बिजली कटौती की जाएगी। इससे कमसरत बांध, कड़ाकचंग 1, कड़ाकचंग 2, मॉडल विलेज, पड़ाक बगीचा, मनारघाट, मालापुरम, राइटमियो, शोलबे पंचायत क्षेत्र, फरारगंज साइट कार्यालय और कन्यापुरम प्रभावित होंगे। विभाग ने कहा है कि काम मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगा और कार्य समय से पहले पूरा होने पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को पर्यटन को नया रूप देने में डिजिटल तकनीक और AI की भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर चाथम सॉमिल समुद्रिका संग्रहालय, मानव विज्ञान संग्रहालय, मत्स्य संग्रहालय और सेल्यूलर जेल संग्रहालय पर्यटकों और आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। इन सभी स्थानों पर प्रवेश निःशुल्क रहेगा। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल शाम 5:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण करेगा। कार्यक्रम में हृदय रोग और उसके उपचार के बारे में जानकारी दी जाएगी। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओमकार सिंह हृदय से जुड़ी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बताएंगे। श्रोता 2456662 और 2447445 नंबरों पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। MV स्वराजदीप जहाज 12 सितंबर को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। यात्रियों के जहाज पर सवार होने की प्रक्रिया सुबह 7 से 9 बजे तक चलेगी और निर्धारित समय से 1 घंटे पहले बंद हो जाएगी। देर से पहुंचने वाले यात्रियों को जहाज पर सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतिरिक्त सामान और माल की लदाई 11 सितंबर को दोपहर 2 से 4 बजे तक होगी। इसके लिए पहले से बुकिंग करना जरूरी है।

0: यात्रियों से समय पर पहुंचने की अपील की गई है। फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिनी मैराथन 2026 का आयोजन किया जाएगा। खेल और युवा मामले निदेशालय, शिक्षा निदेशालय और पर्यटन निदेशालय के सहयोग से यह 10 किलोमीटर की दौड़ आयोजित करेगा। मिनी मैराथन 12 सितंबर को सुबह 6 बजे चूनाभट्टा से नॉर्थ बे के बीच तक का और वहां से वापस होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी मानवता के हित में 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य। वाणिज्य मामलों के संसदीय स्थायी समिति कल से द्वीप समूह के 4 दिवसीय दौरे पर राजधानी श्री विजयपुरम और स्वराज द्वीप में अधिकारियों व हितधारकों के साथ होगी बैठक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में नई तकनीक का उपयोग। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को मिला परम शावक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। और स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का 5वां संस्करण 12 सितंबर से देश भर के साथ द्वीप समूह में होंगे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार के कुछ भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। वहीं कुछ भागों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप के तटीय क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिस कारण समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। इसलिए मछुआरों को 11 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। एमवी रंगत मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी अगली सुबह 12 तारीख को 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा जलयान। अगली सुबह 12 तारीख को 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा जलयान। उसी दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम वापसी यात्रा करेगा। एमवी बाराटंग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 11 तारीख को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा जलयान। उसी सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराजदीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा जलयान। उसी सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा जलयान। उसी शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा स्वराजदीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा जलयान। अगली सुबह 12 तारीख को 5:30 पर स्वराजदीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉलीबॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा जलयान। उसी दिन दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराजदीप की यात्रा पर कल 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा जलयान। उसी दिन दोपहर बाद 2 बजे स्वराजदीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब सुनिए जन सूचनाएं। दूरदर्शन केंद्र श्री

विजयपुरम में 11 सितंबर 2026 शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक हृदय संबंधी बीमारियां, लक्षण और उपचार विषय पर एक लाइव फोनिंग कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ओमकार सिंह विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। दर्शक इस लाइव फोनिंग कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 24562 या 2447455 पर डायल कर सकते हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट यानी प्रसारण सहायकों के पैनल तैयार करने हेतु चयन परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दक्षता एवं कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। 31 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन योजनाओं को पूरा करने वाले एवं श्री विजयपुरम नगर पालिका

0: स्नातक होने के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दक्षता एवं कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। 31 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन योजनाओं को पूरा करने वाले एवं श्री विजयपुरम नगर पालिका के क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म आकाशवाणी के ड्यूटी रूम से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 को है। प्रसारण सहायक के रूप में चयन भविष्य में किसी भी नियमित रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं करता। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकते हैं। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:21 हुए हैं। श्रोताओं पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इंसाफ से। गायक कलाकार है उदित नारायण और अनुराधा पौड़वाल। बोल समीर के हैं और संगीत से सजाया है निखिल विनय ने।
1: डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक।

ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में तैयार गुलजार के लिखे गीत को स्वर दिया है आनंद समी ने। फिल्म का नाम है साथिया।

श्रोताओं, साथियों, फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, पेश है यूवाणी कार्यक्रम।

0: युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज गुरुवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और कुशल राजनेता थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन देशभक्ति, साहस, ईमानदारी और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूट गांव में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान और मेहनती थे। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कानून की पढ़ाई की और वकालत शुरू की, लेकिन उनका मन केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था। वे देश और समाज की समस्याओं को समझते थे और लोगों के अधिकारों के लिए काम करना चाहते थे। पंत जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक बने। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने किसानों और आम लोगों पर होने वाले अन्याय का विरोध किया। विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राज्य के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने शिक्षा, कृषि, कानून व्यवस्था और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण पर ध्यान दिया। किसानों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई सामाजिक और प्रशासनिक सुधार हुए। सन 1955 में गोविंद वल्लभ पंत भारत के केंद्रीय गृह मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए कार्य किया। उन्होंने प्रशासन को व्यवस्थित बनाने और देश में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारत की विविध भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता के समर्थक थे। दोस्तों, उनकी महान सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1957 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों, 7 मार्च 1961 को उन्होंने देश को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका योगदान और आदर्श हमेशा याद किया जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत एक सच्चे देशभक्त और महान जनसेवक थे। उनका जीवन हमें देश के प्रति प्रेम, मेहनत, साहस और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। भारत के इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा।

0: दोस्तों आइए हम आपको सुनवाते हैं लघु रूपक जिसका विषय है बाल गणेश।
1: कैलाश की शांत वादियों में जब एक नन्हे बालक की खिलखिलाहट गूंजती थी तो मानो स्वयं हिमालय भी मुस्कुरा उठता था। कभी वह माता पार्वती के आसपास खेलते दिखाई देते, कभी अपने पिता भगवान शिव की गंभीर साधना में अपनी बाल सुलभ जिज्ञासाओं से रंग भर देते। उनका रूप भी अनोखा था, हाथी का मुख, बड़े कान, गोल मटोल शरीर और आंखों में असीम मासूमियत। यही बालक आगे चलकर देवताओं में प्रथम पूज्य और संसार के विघ्नहर्ता कहलाए। श्री गणेश की बाल कथाएं केवल पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि उनमें बुद्धि, साहस, आज्ञा पालन, विनम्रता और माता पिता के प्रति प्रेम जैसे जीवन मूल्य छिपे हैं। नटखट बाल गणेश की यही मासूम शरारतें धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व की गंभीरता और दिव्यता में बदलती गईं।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राणों का संचार किया। उन्होंने उसे

अपना पुत्र माना और उनका नाम गणेश रखा गया। बाल गणेश अपनी माता की अत्यंत प्रिय थे। कैलाश पर उनका बचपन प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। वह अपनी माता के साथ समय बिताते, खेलते और जिज्ञासाओं से उन्हें तरह तरह के प्रश्न पूछते। बाल गणेश की सबसे विशेष बात थी उनकी निडरता। वह उम्र में छोटे थे लेकिन आत्मविश्वास में किसी से कम नहीं थे। उनके भीतर बालपन की चंचलता थी लेकिन साथ ही माता की आज्ञा का सम्मान भी था। यही गुण आगे उनकी एक प्रसिद्ध कथा में दिखाई देता है, जब उन्होंने भगवान शिव को भी माता पार्वती की आज्ञा के कारण द्वार पर रोक दिया था। यह प्रसंग बताता है कि श्री गणेश के लिए कर्तव्य और माता की आज्ञा सर्वोपरि थी।

एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने बाल गणेश को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। बाल गणेश ने माता की आज्ञा को अपना कर्तव्य मान लिया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और भीतर जाने लगे। बाल गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने बताया कि वह इस घर के स्वामी हैं, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पौराणिक कथा के अनुसार अंततः भगवान शिव के त्रिशूल के प्रहार से गणेश जी का सिर उनके धड़ से अलग हो गया। जब माता पार्वती को इसका पता चला तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने अपने पुत्र को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी को नया जीवन प्रदान किया और उनके धड़ पर हाथी का सिर लगाया। इस प्रकार बाल गणेश का अनोखा स्वरूप संसार के सामने आया।

गणेश जी के पुनर्जन्म के बाद देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों का अधिपति बनाया, इसलिए उनका नाम गणपति है। माता पार्वती के पुत्र होने के कारण वह अत्यंत प्रिय और पूजनीय बने। धीरे धीरे उनका स्वरूप केवल कैलाश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देवताओं और मनुष्यों के बीच भी उनकी विशेष प्रतिष्ठा स्थापित हुई। गणेश जी का स्वरूप अपने भीतर अनेक प्रतीक समेटे हुए हैं। उनका विशाल मस्तक व्यापक सोच और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। बड़े कान अधिक सुनने की प्रेरणा देते हैं, जबकि छोटी आँखें एकाग्रता का संदेश देती हैं। उनका मुख कम बोलने और सोच समझकर बोलने की सीख देता है। उनका वाहन मूषक भी एक रोचक प्रतीक है। वह मनुष्य की चंचल इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर विवेक का नियंत्रण आवश्यक है। इस तरह बाल गणेश का स्वरूप केवल आकर्षक नहीं, बल्कि गहरे जीवन दर्शन को भी अपने भीतर समेटे है।

बाल गणेश की कथाओं में उनकी नटखट शरारतों का भी सुंदर वर्णन मिलता है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय थे। एक बार बहुत सारे मोदक खाने के बाद जब वह अपने मूषक पर सवार होकर जा रहे थे तो रास्ते में उनका संतुलन बिगड़ गया। इसी घटना को देखकर चंद्रदेव ने उनका उपहास किया। गणेश जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने चंद्रमा को एक सीख दी। इस कथा का संदेश केवल इतना नहीं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि यह भी है कि बाहरी रूप देखकर

किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। गणेश जी स्वयं अपने अनोखे रूप के बावजूद बुद्धि और विवेक के प्रतीक बने। उनकी बाल कथाओं में हास्य और मनोरंजन के साथ ऐसे संदेश छिपे हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यही कारण है कि बाल गणेश की कहानियाँ बच्चों को आकर्षित करने के साथ साथ बड़ों को भी जीवन की छोटी छोटी सीख देती हैं।

बाल गणेश की बुद्धिमता की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक उनके और उनके भाई कार्तिकेय से जुड़ी है। एक बार दोनों भाइयों के सामने संसार की परिक्रमा करने की चुनौती रखी गई। जो पहले लौट कर आएगा उसे विजेता माना जाना था। कार्तिकेय अपने तेज वाहन पर सवार होकर संसार की यात्रा के लिए निकल पड़े। गणेश जी का वाहन मूषक था, इसलिए उनके लिए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना कठिन था। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की तीन परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए माता पिता ही संपूर्ण संसार है। उनकी बुद्धिमता से सभी प्रसन्न हुए। इस कथा में गणेश जी की शारीरिक गति से अधिक उनकी विवेकपूर्ण सोच की विजय दिखाई देती है। यह संदेश मिलता है कि हर समस्या का समाधान केवल शक्ति और गति से नहीं बल्कि समझदारी और सही दृष्टिकोण से भी निकाला जा सकता है।

बाल गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा में मोदक का विशेष महत्व है। उनका बाल स्वरूप भक्तों को सहजता और अपनापन देता है। वह ऐसे देवता के रूप में दिखाई देते हैं जिनके पास भक्त बिना किसी भय के अपनी मनोकामना लेकर पहुंच सकता है। समय के साथ गणेश जी को शुभ कार्यों के आरंभ से जोड़ा गया। किसी नए कार्य, यात्रा, विवाह या धार्मिक अनुष्ठान से पहले उनकी पूजा करने की परंपरा विकसित हुई। उन्हें विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाने लगा। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह विश्वास है कि गणेश जी की कृपा और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर मनुष्य बाधाओं का सामना करने की शक्ति और बुद्धि प्राप्त कर सकता है। नटखट बाल गणेश का यही रूप धीरे धीरे गंभीर और जिम्मेदार देवत्व में बदलता दिखाई देता है।

श्री गणेश की सबसे बड़ी विशेषता उनका ज्ञान और विवेक माना जाता है। उन्हें विद्या और बुद्धि से जोड़ा जाता है। विद्यार्थी परीक्षा से पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं। कलाकार अपनी रचनात्मक यात्रा शुरू करते समय उनका नाम लेते हैं और व्यापारी नए काम की शुरुआत में उनका पूजन करते हैं। यह परंपरा इस विश्वास को दर्शाती है कि किसी भी काम के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं बल्कि सही निर्णय और धैर्य भी आवश्यक है। गणेश जी का व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि महान बनने के लिए अहंकार आवश्यक नहीं। उनका विशाल स्वरूप होते हुए भी उनका वाहन एक छोटा सा मूषक है। यह विरोधाभास अपने भीतर एक गहरा संदेश रखता है। वास्तविक शक्ति वही है जो विनम्र रहना जानती है। बाल गणेश की मासूमियत और गणपति के गंभीर व्यक्तित्व में यही सुंदरता संतुलित यही सुंदर संतुलन दिखाई देता है।

श्री गणेश की लोकप्रियता केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं रही। भारत के विभिन्न हिस्सों में गणेश जी की पूजा अलग अलग रूपों में होती है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी

का पर्व उनके प्रति श्रद्धा और उत्साह का बड़ा अवसर बन गया। घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। भक्त आरती, पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से गणपति का स्मरण करते हैं। गणेशोत्सव हमें सामूहिकता और उत्सव धर्मिता का अनुभव कराता है। अलग अलग आयु और वर्ग के लोग एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं।

श्री गणेश की कथा वास्तव में एक ऐसे बालक की यात्रा है जिसमें मासूमियत के साथ साहस, शरारत के साथ बुद्धि और बालपन के साथ जिम्मेदारी दिखाई देती है। कैलाश में माता पार्वती के लाडले नटखट बाल गणेश से लेकर देवताओं में प्रथम पूज्य गणपति बनने तक उनका स्वरूप भारतीय संस्कृति में ज्ञान, शुभता और विवेक का प्रतीक बन गया। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए और माता पिता तथा बड़ों के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। गणेश जी का हाथी मुख हमें व्यापक सोचने, बड़े कान धैर्य से सुनने और छोटी आंखें एकाग्र रहने की प्रेरणा देती हैं। यही कारण है कि सदियों बाद भी जब किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले श्रद्धा से यही स्वर सुनाई देता है, श्री गणेशाय नमः। नटखट बाल गणेश की मुस्कान में आज भी वही अपनापन है और विघ्नहर्ता गणेश के नाम में वही विश्वास जो हर नई शुरुआत को आशा से भर देता है।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लघु रूपक, जिसका विषय था बाल गणेश और इसके लेखक हैं दीपक कुमार सिंह। आइए आप सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ कार्यक्रम
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के

8 बजे हैं। श्रोताओं, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आज के शहंशाह से। गायक कलाकार है अनुराधा पौड़वाल, संगीत बप्पी लहरी का और रचनाकार है इंदिवर।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में तैयार दीवाना फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ों में रचना की है हर्षद जयपुरी ने।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में ये है हम तो प्यार करेंगे फिल्म का गीत। बोल रविंद्र रावल के हैं और धुन तैयार किया है बाबू बोसे ने।

आशा भोसले और साथियों के स्वरों में सुनवा रहे हैं आपको दाता फिल्म का गीत। अनजान के लिखे गीत को धुन से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
2: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG.

सिंदूर फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। पहले रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम द्वारा योग्य भारतीय नागरिकों से पायलट ऑफिसर के एक पद

पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 2,50,000 प्रति माह का कंसोलिडेटेड सैलरी दिया जाएगा। पायलट ऑफिसर पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना रिज्यूम 20 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। रिज्यूम चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम 744101 के पते पर भेजना होगा। अभ्यर्थी अपना रिज्यूम ad.pmb@n.nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कार्यालयों में शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की एक एक सेल्फ असिस्टेड कॉपी के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 1 सितंबर 2026 से सभी कार्य दिवस में दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। शनिवार और रविवार को वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु सीमा तथा अन्य पात्रता मानदंड की विस्तृत जानकारी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के वैकेंसी अनाउंसमेंट सेक्शन में उपलब्ध वैकेंसी नोटिस से प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पत्र के लिए किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों के स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्र पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचार में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से अवसर सचित प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण A1 नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुआ। अब सुनिए गौरव गान।

0: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 5,20,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्ते लागू।
4: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: राकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम more crowded, technologies more powerful and actors more numerous।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड, वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर, दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में

0: फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के दो उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
1: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience.

0: Resilience, innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आज हमारे साथ है वरिष्ठ वैज्ञानिक RS बाना जी। RS बाना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: बाना जी। सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि शुष्क भूमि क्या है, इस पर किस तरह की खेती होती है और इसमें चुनौतियां किस तरह की हैं?
2: अगर हमारे देश की हम कुल कृषि रकबे की बात करें तो उसमें 45% के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध है ही नहीं और है भी तो बहुत सीमित। और जो सिंचित क्षेत्र है बाकी का 55%, उसमें भी काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिंचाई के साधन सीमित है। और जो कम बरसात वाला ऐसा क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बरसात कम होती है। अमूमन 750 मिलीमीटर से कम बरसात वाले क्षेत्रों को अर्धशुष्क क्षेत्र और जो 250 मिलीमीटर से कम वाले हाइपर एरिड क्षेत्र उनको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र। तो जो ये शुष्क क्षेत्र है उनमें चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पानी की उपलब्धता नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्पादन स्तर काफी कम रहता है फसलों का, गरीबी बहुत बड़ी एक समस्या है, तो कई तरह की सामाजिक आर्थिक विषम परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से, क्योंकि ये जितना भी हमारा जो ड्राईलैंड क्षेत्र की हम बात करते हैं, करीब करीब 40% आबादी इसमें रहती है
1: जी।
2: और जो पशुधन है, हमारे देश का आधे से अधिक पशुधन इस क्षेत्र में है, तो चारे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, अनाज की उपलब्धता, माइग्रेशन, रोजगार के अवसर के लिए, कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है, तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो है। इसके अलावा जलवायु संबंधित, मृदा संबंधित समस्याएं हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति कम है, जैविक कार्बन कम है, और चूंकि पशुधन है तो जितनी भी वनस्पति होती है उनको पेट भरने के लिए खिलाना जरूरी है। और जलवायु संबंधित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो कभी तो बरसात आती नहीं है, आती है तो बहुत कम आती है, कई बार बरसात के बीच में काफी सारा अंतराल आ जाता है, उस दौरान फसलें खराब हो जाती है चूंकि पानी की कमी है।
1: तो वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो शुष्क भूमि है और जो आर्द्र भूमि है, इनमें खेती में क्या अंतर होता है?
2: शुष्क भूमि में जो ऐसी फसलें होती है मुख्यतः जिसमें बहुत कम पानी में ही वो पैदा हो सकती है, और जो हमारे शुष्क क्षेत्र है उनकी अगर हम फसलों की बात करें तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा समूह है जो बारानी क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो जैसे कि बाजरा है, ज्वार है,
1: और
2: मोटा अनाज वाली फसलें जिनको श्री अन्न भी बोलते हैं, और मिलेट्स के अलावा दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का भी काफी बड़ा क्षेत्र, यानी कि करीब करीब दलहनों की बात करें तो 85-90% के आसपास दलहन भी बारानी क्षेत्रों में होती है, और तिलहनी जो फसलें हैं वो भी करीब करीब 80% के आसपास इन क्षेत्रों में ही होती है। तो ये इस प्रकार की फसलें होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्र ऐसे हैं जो धान वाले क्षेत्र है जहाँ पर जल भरा होता है, ज्यादा बरसात होती है, तो वहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की होती है।
1: आज के समय में अगर हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपट के लिए भी सरकार सहायता प्रदान कर रही है और शुष्क क्षेत्रों में ये पहल कुछ ज्यादा हो रही है।
2: सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर उच्च हो, उसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार और जो सरकारी संस्थान है उसमें वो लगे हुए हैं। और जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होने की प्रबल संभावनाएं हैं, परंतु जैसे जैसे ये वैज्ञानिक विकास हो रहा है, अगर हम आज के एक या दो दशक पहले की हम बात करें तो यदि 10% बरसात में कमी आती थी, मानसून 10% कमजोर रहता था, तो करीब करीब 13-13.5% से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता था। अब उसी 10% में 0.22% तक ही कमी आती है, हमारा खाद्यान्न उत्पादन स्तर हम बना के रखते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक विकास हुआ है और जो सरकार के प्रयास है और हमारे जो किसानों की मेहनत है उससे हम जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक मात दे पाए हैं। परंतु यदि दीर्घकाल की बात करें तो हमें जलवायु सहनशील किस्मों, जलवायु से संबंधित जो रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं उनको उत्पादन करके सरकार, विज्ञान, वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम निरंतर आगे बढ़ सके।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, फसल विविधीकरण करना, अंतर फसल करना और कृषि वनीकरण जैसी जो प्रणालियां होती है, ये शुष्क भूमि में कितनी लाभदायक हो सकती है?
2: जो बारानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उनमें फसल की फेल होने की संभावना

0: होती है। जैसे आपने पूर्व में कहा फसल विविधीकरण, और ये जो अंतः फसलीकरण है यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग है, एक ही साथ दो से अधिक प्रकार की फसलें लगाएं, बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, या फसलों को अदल बदल कर बोना, बहुत सारी फसलें एक साथ खेतों में लगाना, उसका फायदा यह है कि यदि एक फसल फेल हो जाती है तो दूसरी फसल एक तरह से इंश्योरेंस होती है। यही इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इसी तरह से जो हमारा शुष्क क्षेत्र है वहां पर पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है, और वो एक बरानी क्षेत्रों की जीवन रेखा है, जीवन की आधारशिला है। तो जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो पशुधन के लिए एक चारे का वैकल्पिक स्रोत तैयार करती है, वर्ष भर किसानों की आमदनी होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, अंतः फसलीकरण का समावेश हमारी फसल प्रणालियों में हो और फसल विविधीकरण को हम बड़े पैमाने पर अपनाएं।
1: डॉक्टर बाना, अभी ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को विशेष तौर पे महत्व दिया जा रहा है, तो भारत का ये जो सहयोग की भावना है भारत की, इसके माध्यम से शुष्क भूमि की खेती के क्षेत्र में भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी कैसे महत्व दिया जा रहा है, खासतौर पर जब हम अनुभव की बात करते हैं, तकनीक साझा करने की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें।
0: जी, भारत सरकार का जो ICAR है, कृषि मंत्रालय का, और ICRISET जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद बेस्ड, ये दोनों मिलकर जो ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस 10, 11, 12 सितंबर 2026 का आयोजन कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर के विश्व स्तर के जो वैज्ञानिक गण हैं, किसान हैं जो बारानी खेती से संबंधित, वो सब एकत्रित हुए हैं, और राजनीतिक नेतृत्व भी वहां पे आया है। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज वहां पर आके और एक अपना विजनरी टॉक दी है। तो ये क्योंकि भारत अब दुनिया में एक राह दिखाने वाला उस पे चल रहा है, और हम जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हमें बारानी क्षेत्रों को, ड्राईलैंड्स को विकसित करना है, और जो ग्लोबल साउथ की जो हम बात करते हैं, यानी कि दुनिया का वो दक्षिणी हिस्सा जो जिसमें लैटिन अमेरिका भी है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक के जो देश हैं, जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, उनमें भारत एक लीडर की भूमिका में है। और ये जो ड्राईलैंड से संबंधित अनुसंधान है भारत में, ICAR में, IARI जो पूसा संस्थान है उसमें, और ICAR के इंस्टीट्यूट है जैसे कि काजरी है जोधपुर में, क्रीडा है हैदराबाद में, ये जो तकनीकियों का विकास किया है वो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है, और जो दुनिया भर के संस्थान है, वैज्ञानिक है जो आज एकत्रित हुए हैं, वो सब उन पे मंथन करेंगे। और ICRISET का और ICAR का ये 50 साल का सहयोग हुआ है, उसको भी एक मनाया जा रहा है 2026 में, तो उस पे मंथन होगा, क्या क्या तकनीकियां हो सकती है जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में हमारे किसानों की आजीविका और आय बढ़ाती रहे, और जो ये फसल प्रणालियां हैं बरानी क्षेत्रों की, शुष्क क्षेत्रों की, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, सतत विकास कैसे हो, उस पे मंथन होगा।
1: डॉक्टर साहब, ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस जो हो रही है इसमें शोध, उद्योग, स्टार्टअप, सरकार और किसान संगठनों को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है, तो आपको लगता है कि सभी पक्षों के बीच में जब सहयोग बेहतर होगा तो फिर शुष्क भूमि के किसानों की आय बढ़ेगी और खेती की संभावनाएं जो कम होती हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी?
0: बिल्कुल, इसमें हमें साथ मिलकर काम करना होगा, और जो थीम है ड्राईलैंड कांग्रेस की, साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब दुनिया भर के जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बड़ी दीर्घकालिक सोच होगी, और साथ ही जो ये हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, अनुसंधान करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेज, यूथ, महिलाएं, ये सब अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं, और ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जलवायु परिवर्तन के दौर में किस तरह से खेती को सतत उत्पादन मिलता रहे, शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय निरंतर बढ़ती रहे, और जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई बार नुकसान हो जाता है, बहुत तगड़ा ड्राउट, सूखा आ जाता है, उससे माइग्रेशन बढ़ जाता है, उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा।
1: डॉक्टर बाना, कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को किस तरह की फसलों को अपनाना चाहिए, कैसी पद्धति अपनी रखनी चाहिए?
0: हमारे जो ड्राईलैंड्स है उनकी अलग ही प्रकार की फसलें भी होती है, कुछ ऐसी फसलें होती है जो दूसरी जगह पे उतनी नहीं होती, बीजीय मसाले होते हैं जिसमें कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, नागोरी पान मेथी है, तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं। यदि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें तो यूरोपीय बाजार या अमेरिकी बाजार में इसका बहुत बड़ा स्कोप है, और कुछ किसान और जो आजकल युवा उद्यमी विशेषकर FPO का निर्माण करके और अपनी आमदनी में वृद्धि

0: कर रहे हैं और भारत में भी जो किसानों की आयु बढ़ रही है, युवा कम आकर्षित हो रहा है, तो ये जो इस तरह की एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके जरिए हम युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित कर सकते हैं और जो बरानी क्षेत्रों की फसलें हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर युवा इसमें आगे आते हैं और एक्सपोर्ट हब बना के, और इसमें न केवल युवाओं का बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है बरानी क्षेत्रों के, उनके किसानों की आय बढ़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, किसानों के हित की जब बात कर रहे हैं तो कोई किसान यदि मदद लेना चाहे तो ICAR की बात हो, पूसा संस्थान हो और ICRISET हो, जिनकी साझेदारी के 50 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, कैसे उनकी मदद ले सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं शुष्क भूमि में अपनी खेती को बढ़ाने के लिए?
0: ICRISET जो कि दुनिया भर में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में काम कर रहा है और ICAR का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जिसकी पहुंच, जहां बोलते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ जो जगह है, सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ अरुणाचल के दिरांग से लेके अंडमान के पोर्ट ब्लेयर तक और सब जगह देश भर में हर जगह ICAR के संस्थान मौजूद हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद हैं जो किसानों के साथ निरंतर काम कर रहे हैं। उनकी सिर्फ समस्याएं सुनी नहीं जाती, उनको लैब तक लाया जाता है और लैब में उनका समाधान खोजा जाता है और वापस लैब से लैंड को वो ट्रांसफर होती है। और अब तो जो हमारी सरकार है वो निरंतर प्रयासरत है, भले ही वो विकसित कृषि संकल्प अभियान हो या जो किसानों के साथ जुड़कर बैलेंस फर्टिलाइजेशन का जो अभियान चलाया है अभी इस वर्ष, तो उसके थ्रू हम जो ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं और ICAR का और जो ICRISET का जो 50 वर्ष की जो ये गोल्डन जुबली है उसमें जो युवा और महिला किसान है उनको सम्मान मिल सके, उस पर बड़ा एक फोकस है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने युवा और महिला किसानों की बात की, थोड़ा सा छोटे और सीमांत किसानों की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का असर भी उन पर जाहिर सी बात है पड़ता ही है, तो महंगी तकनीक भी है और जानकारी की कमी की भी बात कह सकते हैं हम, संसाधनों की कमी है, तो ये सारी जो बातें हैं इन पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो कैसे इनसे निपटा जा सकता है?
0: छोटे किसानों के लिए हमारे संस्थान है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAR और IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, निरंतर प्रयासरत है छोटी मशीनरी, किसानों के लिए कम लागत वाली तकनीकियां, संरक्षण कृषि जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जीरो टिलेज या नो टिल फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें बिना जुताई किए ही खेती करें, फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, उनको खेतों में ही उपयोग करें ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और जो जलवायु को प्रदूषण होता है उसका नुकसान होता है उन सबको बचा जाए। तो स्मॉल स्केल मशीनरी, कम लागत वाली जो सस्य तकनीकियां हैं उनका विकास हम निरंतर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा देश तो छोटे किसानों का देश ही कह सकते हैं, तो उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जुड़ के और खेतों में काम कर रहे हैं हमारे किसान वैज्ञानिक मिलकर साथ में, और जो तकनीकी का विकास हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में धान उत्पादन में एक नंबर पर पहुंच चुके हैं, हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट है, आज हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं उनमें ज्यादा सांद्रता में पोषक तत्व हो उसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर रहे हैं और डिजिटल एग्रीकल्चर और जो एक मौसम सेवा है जिसमें किसान मौसम आधारित तकनीकियों से जुड़ा है, निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हमारी तकनीकी उन तक पहुंचे, जिसमें हमारे जो सोशल मीडिया सहित जो पुराने प्लेटफॉर्म भी थे उन सब का उपयोग करते हुए हम किसानों से सीधा जुड़े हुए हैं।
1: डॉक्टर बर्ना, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम संदेश से आते हैं में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, हमारा नंबर है 9474234000। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9474234000। पहला संदेश हमें आया है चाईबासा झारखंड से, शिवा प्रेम, कपिल शिवान, संगीता लिपि, दीपाली गोप का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं अग्नि साक्षी फिल्म का ये गीत।

आशा भोसले की आवाज़ में सुनिए अगला फरमाइशी गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है दिनेश करुणा वर्मा ने छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है उमराव जान।

फिल्म गोपी के लिए हमें संदेश भेजा है उदयपुर से सुशील रेणु, मोहित यादव, नमिता कार्तिक, सानू संजय यादव ने। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अगला संदेश हमें भेजा है शिवा प्रेम कपिल ने चाईबासा झारखंड से। ये श्रोता सुनना चाहते हैं मिलन फिल्म का ये गीत।

0: पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम से हमें संदेश भेजा है बजेंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, विश्वकर्मा ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं शरापित फिल्म का ये गीत।
1: पलकों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, बस तुम।

शराबित फिल्म के इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप बेस फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेश से आते हैं अब यहीं संपन्न होता है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार के कुछ भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, वहीं कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप के तटीय क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिस कारण समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। इसलिए मछुआरों को 11 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:28 हुए हैं। आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर की वाणी। दूसरों की कमियां देखना आसान है, लेकिन अपनी कमियों को पहचानना ही